सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन मंगलवार है। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

जीवन सौरभ नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटे से शब्द का बदलना आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? आज की कहानी आपको शब्दों के जादू के बारे में बताएगी। एक बहुत बड़े शहर के व्यस्त फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। वो अंधा था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके पास एक गत्ते का टुकड़ा यानी साइन बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। पूरा दिन लोग वहां से गुजरते, लेकिन बहुत कम लोग उसकी टोपी में सिक्के डालते। ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज कर देते। बेचारे बूढ़े की टोपी शाम तक लगभग खाली ही रहती थी। तभी वहां से एक विज्ञापन बनाने वाली महिला गुजरी। वो रुकी और उसने देखा कि बूढ़े की टोपी में बहुत कम पैसे हैं। उसने बूढ़े से बिना कुछ कहे उसका साइन बोर्ड उठाया, उसे पलटा और उस पर कुछ नए शब्द लिख दिए। जैसे ही उसने वो साइन बोर्ड वापस रखा, चमत्कार होने लगा। जो भी वहां से गुजरता वो रुकता, साइन बोर्ड पढ़ता और बूढ़े की टोपी में पैसे डालने लगता। देखते ही देखते बूढ़े की टोपी सिक्कों और नोटों से भर गई। शाम को वह महिला फिर वहां से गुजरी। बूढ़े ने उसके जूतों की आहट पहचान ली। बेटा, सुबह तुम ही यहां आई थी ना? तुमने मेरे बोर्ड पर ऐसा क्या लिख दिया कि आज हर कोई मेरी मदद कर रहा है? महिला ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने वही लिखा जो आपने लिखा था, बस लिखने का तरीका बदल दिया। उसने बोर्ड पर लिखा था, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। दोस्तों, दोनों लाइनों का मतलब एक ही था कि वह आदमी अंधा है, लेकिन पहली लाइन सिर्फ एक कमी बता रही थी और दूसरी लाइन ने लोगों को यह एहसास कराया कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं। उस एहसास ने लोगों के दिल खोल दिए। जिंदगी में हम अक्सर क्या कह रहे हैं से ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे कह रहे हैं। हमारे शब्द किसी को दुखी कर सकते हैं और हमारे शब्द ही किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो शायद अपनी बात कहने का तरीका बदलने का समय आ गया है। अच्छे शब्द चुनिए, क्योंकि शब्द मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिसका शीर्षक था, अंधा भिखारी और बदला हुआ साइन बोर्ड। मैं हूं दानिश, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, जहां से हर कहानी आपके दिल तक जाती है। जीवन सौरभ।

अभी सुना आपने जीवन सौरभ, अंधा भिखारी। अब आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में।

अब से ठीक बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल एक सूक्त 164 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत पर आधारित होगा आज का एक कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। पर्यावरण संरक्षण और कानून, इस विषय पर सुनिए हमारा कार्यक्रम प्रकृति पुकार सुबह 8:30 पर। विशेषज्ञ ओम प्रकाश श्रीवास्तव से मनीषा चतुर्वेदी की खास चर्चा आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे।

क्षणभंगुर संसार और सदपुरुषों की दुर्लभता, इस पर सुनिए कार्यक्रम सुबह 9:09। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी से सुनीता सिंह की बातचीत आपको इस कार्यक्रम में सुनवाएंगे। सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम, हमारा विशेष कार्यक्रम शिव भाई गुप्ता निमाड़ी गायन। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने। सुबह 10 का समय होगा रेडियो रिपोर्ट और उसके बाद परिक्रमा का। हिंदुस्तान हमारा, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। दिनेश गुप्ता की शहादत पर आधारित होगा आज का यह कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:00 जंक फूड पर। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेतानंद से रतनीश सोनी की खास बातचीत आपको सुनवाएंगे। योग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12:00 तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए सुनते हैं अक्षय निधि एक विराम के बाद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वे देवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: इह ब्रवीतु य ईमंग देवास्य वामस्य निहितं पदं वेह, शीर्ष्णः क्षीरं दुह्रते गावो अस्य वव्रिम वसाना उदकम पदापुहु। जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की किरणें पानी का दोहन करती हैं, वे ही तेजस्वी होकर पैरों से जल को सोखती हैं। माता पितर मृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सम ही जग में, सा भीमत्सुर गर्भरसा निविद्धा नमस्वंत इदु पवाकमीयुः। माता पृथ्वी ने ऋत यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्य का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्भ रस से निबद्ध हुई, तब उनमें नमन पूर्वक वचनों का आदान प्रदान हुआ। युक्ता माता सीधुरि दक्षिणाया अतिष्ठद गर्भो व्रजनीष्वन्तः अमी मेद्वत्सो अनु गाम पश्यद्वि स्वरूप्यम त्रिषु योजनेषु। समर्थ सूर्यदेव की धारण क्षमता पर माता पृथ्वी आधारित है। गर्भ गमनशील के बीच रहता है। बछड़ा बादल गौवों किरणों को देखकर शब्द करते हुए अनुमान करता है, तब तीनों का संयोग विश्व को रूपवान बनाता है। तिस्रो मातृ स्त्री पितृन बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम विश्वमिन्वाम। यह सृष्टा प्रजापति अकेले ही तीन माताओं तथा तीन पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित हैं। इन्हें थकावट नहीं आती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे रहने वाले प्रजापति की वाणी के संबंध में द्युलोक के पृष्ठ भाग पर विचार करते हैं। द्वादशारम नहि तज्जराय वरवर्ति चक्रम परि द्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः। ऋत सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ का 12 अरों राशियों वाला चक्र इस द्युलोक में चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता। हे अग्निदेव, संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र अर्थात अरे यहां रहते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आज राम के भजनों में रमने का प्रयास करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु, तू दयालु दीन तुहु, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम रस पीजे। इन विभिन्न राम भजनों पर आज हम सुनेंगे हमारा भक्ति संगीत।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

अपने परिवार के साथ समय बिताने आए एक सैन्य अधिकारी को सूचना मिलती है कि दुश्मन देश घुसपैठ कर रहा है और युद्ध के आसार हैं। वो अधिकारी लौटने की तैयारी करता है। चिंता से भरकर जब उसका दोस्त उसे सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहता है तो वो जवाब देता है, तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और कुछ महीनों बाद वो तिरंगे में लिपट कर ही वापस आता है। वो साल था सन 1999। वो लड़ाई थी कारगिल युद्ध, और वो अमर बलिदानी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमल बत्रा एक अध्यापिका। बत्रा परिवार में सीमा और नूतन दो बच्चियों के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उनका नाम रखा लव और कुश। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी उनके भाई विशाल बत्रा। विक्रम बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। इसके साथ ही कराटे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। विक्रम बत्रा की आरंभिक शिक्षा पालमपुर के डीएवी स्कूल में हुई। फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। अपने आसपास बचपन से ही उन्होंने वर्दी पहने हुए सैन्य अधिकारियों को ही देखा था, और ये वर्दी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। इस तरह उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। पिता बचपन से ही उन्हें छत्रपति शिवाजी, शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम और बलिदान की भावना भर दी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो एनसीसी में शामिल हो गए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम बत्रा के लिए भविष्य के अनेक दरवाजे खुले थे, लेकिन उनका अपना चुनाव था कि उन्हें भारतीय थल सेना में ही शामिल होना है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी में जाने का अवसर भी उनके सामने आया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस नौकरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ।

स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए करने की योजना बनाई ताकि चंडीगढ़ में ही रहते हुए सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस परीक्षा में वो सफल हुए। 21 साल उन्होंने एक सपना देखा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से 1.5 साल का प्रशिक्षण लिया, तब उनके कंधों पर 2 स्टार लगे। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। सोपोर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहां कई आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। अपनी वीरता, पराक्रम और जोश के कारण वो अपने साथियों और अधिकारियों के प्रेम पात्र बन गए। अत्यंत हंसमुख और जीवंत विक्रम बत्रा के मन में हर किसी के लिए असीम प्रेम था। उनकी अनेक डायरियां हैं जिनमें जगह जगह लव ऑलवेज लिखा मिलता है। दूसरों की सहायता और देश का सम्मान उनके संस्कारों में था। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना, यही उनका व्यवहार था जो जीवन में भी दिखाई दिया और युद्ध के मैदान में भी। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। कारगिल की अनेक चोटियों पर दुश्मन ने अधिकार कर रखा था। सीमा पर भारतीय जवान भेजे जा रहे थे ताकि दुश्मन को खदेड़ा जा सके। कारगिल युद्ध के दौरान ही कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया और असीम यातनाओं के बाद उनकी लाशें भारत भेजी। देश के साथ साथ विक्रम बत्रा भी इस घटना से अत्यंत उद्वेलित थे। अब तक 13 जैकरिफ एक रिजर्व फोर्स थी। ऑपरेशन विजय जारी था। तोलोलिंग और हम्प पर भारतीय जवानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने पॉइंट 5140 को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने रणनीति बनाते हुए 2 टीमें बनाई, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की ब्रावो कंपनी और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी। जब तक ये फौजी चढ़ाई चढ़ेंगे तब तक तोपखाने से दुश्मन पर हमला होता रहेगा, और जब दोनों कंपनियां दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर होंगी तब आर्टिलरी हमला बंद होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी। संपर्क रेडियो संदेश से बना रहेगा। पहचान छुपाने के लिए सभी के कोड नेम रखे गए। लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल का कोड नेम संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह रखा गया। पॉइंट 5140 जीतने के बाद जीत की सूचना देने के लिए विक्ट्री सिग्नल भी तय हुए। संजीव जामवाल ने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा ओ याया, और विक्रम बत्रा ने रखा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा का विक्ट्री सिग्नल देश भर में चर्चित हो गया था क्योंकि इसमें भावना छिपी थी दुश्मन के और बंकर ध्वस्त करने की और चोटियां जीतने की। इस तरह पॉइंट 5140 के लिए विजय अभियान शुरू हुआ।

कारगिल युद्ध इतिहास के कठिनतम युद्धों में से एक था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था दुश्मन, जहां से वो भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख सकता था। इसलिए जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़कर सुबह होने से पहले दुश्मन के सभी बंकर ध्वस्त करने थे। सैनिक जब टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर थे, तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी गई और भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम बत्रा ने पीछे से हमला शुरू किया, दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी 2 ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म कर दिया। दोनों कंपनियां जैसे दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही गुत्थम गुत्था लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वो वाकई शेरशाह थे। दुर्गे माता की जय के बुलंद उद्घोष के साथ .5140 पर तिरंगा लहरा उठा। इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई। विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र के लिए उनका नाम भेजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके, वो इस कारगिल युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए रेस्ट पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला लक्ष्य था .4875, क्योंकि यहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे पर हमला कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधि को भी इस ऊंचाई से देख रहा था। 13 जैकरिफ अब .4875 के लगभग 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात थी। दुश्मन पर हमला शुरू हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा को बुखार था, पिछला घाव भी अभी भरा नहीं था, लेकिन वो टॉप पर जाकर युद्ध करना चाहते थे। .5140 के संघर्ष में शेरशाह विक्रम बत्रा से पाकिस्तानी फौज रेडियो संदेश पर बात कर चुकी थी, इसलिए उनके हौसले और पराक्रम को वो पहचानती थी। .4875 की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। इस चोटी के दोनों तरफ बड़े ढलान थे और दुश्मन की कठिन नाकेबंदी भी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे, भीषण गोलाबारी और फायरिंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वो लड़ाई भी लड़ते रहे और अपने साथी की जान भी बचाई। गोली और बमबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इसी बीच उन्हें गोली लग गई। उनकी डेल्टा कंपनी के जवान इसे सह नहीं सके। वो सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और दुश्मन के आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। .4875 पर तिरंगा लहरा उठा, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। तारीख थी 7 जुलाई 1999। जब तिरंगे में लिपटकर वो वापस आए तो पूरे देश का मन भीग गया। उनके सम्मान में .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की खेल।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
4: धन्यवाद मनीषा जी।
3: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
4: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
3: जी।
4: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते बंदे मातरम, बंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। इसका अर्थ यही है, यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
3: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
4: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है। हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था, हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर है।
3: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे, जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
4: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं, और वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते हैं तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है, अब लोग सजग हो गए।
3: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
4: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
3: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
4: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
3: जी,
4: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
3: जी,
4: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटर जनरेशनल इक्विटी का,
3: इंटर जनरेशनल इक्विटी जी।
4: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है। और बच्चों की क्या, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
3: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं।
4: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है, और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है, इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है। भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है।
3: जी, आपने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
4: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देख कर ही वहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहाँ पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं, यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
3: जी।
4: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
3: भूमिका की बात तो हो गई लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत जरूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
4: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीजें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
3: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्व जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं, जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
4: एकदम सही बात,
3: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
4: और तो इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
3: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
4: एकदम सही।
3: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
4: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं। ये एक बेसिक चीजें हैं
3: जी।
4: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें। ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
3: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
4: एकदम।
3: अगर हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दांव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
4: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें
3: जी,
4: स्वयं लिखे और भेजे
3: जी। पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
4: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि ये माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया
3: जी।
4: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ के पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
3: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहां खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
4: जरूर।
3: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
4: आपका भी धन्यवाद और आभार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंगरूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने इस सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले। ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआघरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।
3: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
4: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: नमस्कार, मैं हूँ अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक हूँ, सलाम करता हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूँ साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
1: जी,
0: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहां क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
1: जी।
0: तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है।
1: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
0: जी।
1: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें
0: जी,
1: उसे
0: जी।
1: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे, उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
0: बिल्कुल।
1: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके
0: जी। जी
1: जी।
0: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
1: जी।
0: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता, कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
0: जी।
1: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
0: जी,
1: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
0: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में है।
1: जी।
0: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
1: जी जी।
0: तो जो मनुष्य है
1: वो
0: जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
0: दृष्टि कैसी हो?
1: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है, योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। लेकिन यहां पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह हैं, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डूबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहां तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
0: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
1: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहां पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहां पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
0: एक तरह
1: लोग
0: से
1: भी।
0: वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
0: अच्छा, श्री राम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
1: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांग जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा,
0: जी,
1: यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांग जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
0: कोई
1: उथल पुथल नहीं है, तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
0: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो,
1: चित्त शांत हो, बिल्कुल ठीक है,
0: वो
1: वीर है। अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है,
0: जी,
1: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है, तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो है जहां तरंगे शांत हो गई हो और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
1: जी,
0: तो क्या कहते हैं श्री राम के लक्ष्मी की जो परिपूर्णता है वो किस तरह से होती है?
1: देखिए, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मी की परिपूर्णता क्षमा, विनय और उदारता आदि सात्विक बलों से होती है। ये सात्विक बल हैं
0: जी।
1: एक कथा भी आती है पुराणों में कि जब लक्ष्मी जी अपने वर का चयन कर रही हैं, तो ऐसे में उनकी एक शर्त है कि जो मुझे नहीं चाहेगा वो हमारे चाह का विषय होगा। और लक्ष्मी को चाहने के लिए सारे देवता व्याकुल हैं, हर लोग चाहते हैं कि वरमाला उनके गले में डाल दें वो, लेकिन एकमात्र विष्णु ऐसे हैं जो शांत बैठे हुए हैं, उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
0: बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो विष्णु जी,
1: सात्विक बल के साथ हो।
0: जी जी,
1: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
0: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है, और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियामाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्ध बस पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए? प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध श्राद्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
0: जी। अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार?
1: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
0: नहीं
1: है
0: देखा।
1: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है? क्षणभंगुरता। तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व तो नहीं दिखता और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
0: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा।
1: जी,
0: ऐसा क्यों कहा?
1: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
0: जी।
1: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते हैं कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है।
0: जी,
1: एक दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
0: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
1: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं? राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
0: जी।
1: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
0: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें।
1: जी, इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है, ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है, राम जी कह रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है, जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षण जीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
0: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
1: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं, को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है। क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने, अपने विवेक को जागृत करने के।
0: जी जी, तो क्षण भंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
1: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें, तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है, और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है, क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
0: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वह पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया। ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे, वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसंख्या की तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंसी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: मैया की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: बोलो भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है, बड़ी मुश्किल से आजादी रे मिली। ये देश का युवा न के को संदेश है इस मंच का माध्यम से। एक छोटा सा गायक है

0: एकता मोह आनंद है।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ग्रीन हाउस का ब्राह्मण राजदूत हनुमंत राव और बर्क की अनोखी मित्रता। 1781 की गर्मियों में लंदन के सबसे असामान्य कूटनीतिक आवासों में से एक कोई महल नहीं बल्कि बीकन्स फील्ड का एक ग्रीन हाउस यानी पौधा घर था। यहाँ के अतिथि थे हनुमंत राव, जो एक उच्च जाति ब्राह्मण राजदूत थे। उन्हें पदच्युत मराठा पेशवा द्वारा भ्रष्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ न्याय मांगने के लिए भेजा गया था। उनके मेजबान दिग्गज और मशहूर विचारक एडमंड बर्क थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दुर्लभ सांस्कृतिक सम्मान का परिचय देते हुए अपने ग्रीन हाउस को ब्राह्मणों के कठोर अनुष्ठान के लिए एक अभ्यारण्य में बदल दिया। हनुमंत राव का दैनिक जीवन एक विदेशी भूमि पर अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वे फर्श पर अपना भोजन स्वयं बनाने पर जोर देते थे और कमर से ऊपर लगभग निर्वस्त्र रहते थे, भले ही अंग्रेजी ठंडी हवाएं कांच के शीशों को झकझोर रही हों। उनके प्रवास का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका अटूट अनुशासन था। यदि भोजन करते समय कोई गैर ब्राह्मण उन पर केवल एक नजर भी डाल देता तो वे आध्यात्मिक अपवित्रता से बचने के लिए तुरंत पूरे भोजन का त्याग कर देते थे। इन बाधाओं के बावजूद राजदूत और अंग्रेजी कुलीन वर्ग के बीच आत्मीय बंधन बन गया। हनुमंत राव बर्क और चित्रकार सर जोशुआ रेनॉल्ड्स के काफी करीब आ गए थे। उन्होंने एक दुभाषी के माध्यम से उन्हें बताया कि उनकी उपस्थिति उन्हें वैसे ही सहारा देती है जैसे एक गेंडा अपने बच्चों को केवल निहार कर उनका पोषण करता है। हालांकि वे देखने में एक विदेशी एकांतवासी लगते थे, लेकिन वास्तव में वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंट थे। उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने ब्रिटिश संसद को हिंदू कानूनों पर सबसे प्रामाणिक विवरण प्रदान किया, जिसने अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स के ऐतिहासिक महाभियोग की नींव रखी। हनुमंत राव के प्रवास ने यह सिद्ध कर दिया कि एक भारतीय काला पानी पार करने के बाद भी अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति एक अडिग चट्टान की तरह बना रह सकता है।
2: हेलो, पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
3: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

गायन की शुरुआत उन्होंने की राग मेघ मल्हार से, और गायन पर्व का समापन हुआ मंजरी असनारे केलकर के गायन से।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह गायन डॉक्टर ऋषि मिश्र का।
1: आपने इतना प्यार से सुना है तो सुनाने का मन कर गया मुझे। मुखड़ा देखिएगा।

0: और ये है मंजरी असनारे केलकर का गायन।
1: मौसम बारिश का है तो मल्हार का एक प्रकार रामदासी मल्हार। रामदासी मल्हार कई तरह से गाया जाता है। ये पर्टिकुलर बंदिश जो है इसमें दोनों गंधारों का प्रयोग किया गया है। बदरा उमड़ घुमड़ कर आन सताए ताल झपताल, और उसकी द्रुत बंदिश है कितते आया वेरी। राग रामदासी।

ये थी रेडियो रिपोर्ट भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय गायन पर्व के आखिरी दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: कोलकाता शहर 8 दिसंबर 1930 की घटना है। दिनेश गुप्त, सुधीर गुप्त और विनय बोस नाम के 3 क्रांतिकारी अंग्रेजी लिबास में राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे। कर्नल सिम्पसन के ऑफिस में घुसकर उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। कर्नल सिम्पसन, जो क्रांतिकारियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था, उसने जेलों को नारकीय जीवन का केंद्र बना रखा था। कर्नल की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस ने तीनों क्रांतिकारियों को घेर लिया। पहले तो उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, फिर बचने का कोई रास्ता नजर न आने पर योजना के अनुसार स्वयं को गोली मार ली। सुधीर गुप्त घटनास्थल पर ही मारे गए। विनय बोस की मृत्यु 2 दिन के बाद हुई, लेकिन दिनेश गुप्त को ऑपरेशन करके बचा लिया गया। उन पर कर्नल सिम्पसन की हत्या करने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। जब यह साबित हो गया कि कर्नल के शरीर में लगी 2 गोलियां दिनेश गुप्त की रिवॉल्वर की थीं, तो जज ने उन्हें हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी। फांसी से पहले दिनेश गुप्त ने अद्भुत आत्मबल और धैर्य का परिचय दिया। 7 जुलाई 1931 को जब उन्हें अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई, तो उनकी उम्र मात्र 20 साल थी।
3: अरे पेपर वाला, अरे भाई साहब अपना पेपर उठा लीजिए, नहीं तो भीग जाएगा।
4: हाँ भैया फिक्र मत करो, ये लो उठा लिया। हाँ यार, अरे आओ आओ चाय पी लो भाई।
3: अरे नहीं काका, पहले काम फिर आराम, चाय तो आप इन्हें पिलाइए, मैं तो चला।
4: अच्छा ठीक है भाई।
5: अरे काका नमस्कार।
4: अरे आ गए सल्लू, आओ आओ।
5: काका बढ़िया चाय पिला दो, आज कॉलेज में मीटिंग है।
4: अरे रमेश चाय लगाओ भाई, लो तब तक अखबार पढ़ो भैया, ले लो।
5: अरे काका सारी खबरें बासी हैं।
4: बिना पेपर पढ़े ये नहीं बोल सकते आप। ये देखो सल्लू, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पर बढ़िया लेख है।
5: काका गए साल गैदरिंग में हमने नाटक खेला था, वो पहले नंबर पर आया था। अब की बार समझ में नहीं आता कि कौन सा नाटक करें, कौन सा नाटक खेलें।
4: अरे सल्लू बेटा कोई हास्य नाटक कर लो, सबको मजा आ जाएगा।
5: अरे काका पिछले साल भी तो वही किया था, इस साल कुछ नया करना चाहते हैं।
4: अच्छा चलो ठीक है, ये पहले बिस्कुट खा लो, लो और चाय पियो गर्मा गर्म, फिर सोचते हैं। हाँ।
6: तुम लोग एक बढ़िया सा नाटक क्यों नहीं कर लेते हो?
5: लेकिन किस पर काका?
4: अरे बेटा सुधीर गुप्त और दिनेश गुप्त बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन पर क्यों नहीं करते?
5: हाँ काका करने को तो कर दे, लेकिन इनके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं है।
4: अरे बेटा मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो।
5: जी काका।
7: चना जोर गरम बाबू मैं लाया, चना जोर गरम, 10 पैसे के खा ले तू, 10 पैसे के खा ले तू, चना मजेदार चना जोर गरम।
8: अरे सुन भाई चने वाले।
9: ओ
8: अरे इधर तो आ भाई।
9: ओ भाई।
8: हाँ ये 3 जगह बना बढ़िया मसालेदार।
9: हाँ ये लो ये लो।
8: अच्छा सुधीर तेज मसाला चलेगा ना?
6: अबे धीरे बोल दिनेश, कोई सुन लेगा।
8: इतना डर के नहीं जीते प्यारे, जमीन तो क्या आसमां हिला देंगे, जिद पे आ गए तो आग ही लगा देंगे। हमको रोकना आसान नहीं इतना, देश के लिए जान भी गवा देंगे।
10: हमें तो बस इंतजार है उस दिन का, जिस दिन वो अत्याचारी धूल चाटेगा।
8: ले भाई ओ चने वाले, ये ले तेरे पैसे। वाकई तेरे चने है मजेदार।
7: अरे चना खाए अंग्रेज बाबू, चना खाए अंग्रेज बाबू, निकले आँख से उसके आंसू, चना जोर गरम चना।
8: वाह वाह बढ़िया।
6: इस देसी चने ने तो मेरे अंदर तूफान मचा दिया।
8: यारो तैयार हो जाओ।
6: दिनेश विनय मेरी योजना ध्यान से सुनो, किसी को शक नहीं होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं।
10: आप तो शुरू करो सुधीर भैया, हम सावधान हैं। बताओ अब आगे हमें क्या करना है?
6: हथियार तो मैंने जुटा लिए, बस हमें जल्दी से जल्दी उस पापी कर्नल सिम्पसन को मौत के घाट उतारना है। मैंने बड़ी बाड़ी के जंगल में हथियार छुपा रखे हैं,

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और स्वास्थ्य चर्चा में आज बात होगी जंक फूड पर। इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता आनंद जी। श्वेता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्वेता जी, जंक फूड इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि जंक फूड किस श्रेणी में आया, इसकी क्या डेफिनेशन है और फिर इसके प्रभाव पर बात करेंगे।
2: जंक फूड्स ऐसे बोले डेफिनेशन में, ऐसे खाने जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ऑयल्स होते हैं। अब जंक फूड के अलावा आजकल एक शब्द और चला, जंक्स फूड। अच्छा। जंक्स फूड का आधार है या मतलब है कि जंक फूड, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत हाई मात्रा में शुगर, फैट, ऑयल्स होना। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मीन्स ऐसे फूड जिसमें हमने खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए लेकिन साथ में एडिटिव फ्लेवर्स, कलर्स मिलाए। दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डिप्राइव्ड। जो आज की बातों में हमें विटामिन, मिनरल्स जो बहुत हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इस जंक फूड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कैफीन, टी, शुगर्स, एडेड जो भी हमारे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसे कार्बोनेटेड बोलते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, ये सब जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो अब जंक फूड एक तरह से कहा जाए तो जंक फूड हो गया है।
1: जंक फूड की श्रेणी में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी भी आ गई है।
2: केवल ये शुगर, टी वाली जो चीज़ें, जो पेय के अलावा, इवन जो हम फ्रेश जूसेस समझते हैं जो पैकेट में आते हैं, वो भी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं क्योंकि उसमें एडिटिव फ्लेवर्स डले हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगे एज कम्पेयर टू ये प्रिजर्व्ड फूड ड्रिंक्स और जूसेस।
1: चूंकि आपने बताया कि प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं, शुगर एडिड होते हैं, तो ये भी जंक उसी श्रेणी में आ गए और नुकसान लगभग उतना ही करते हैं।
2: बिल्कुल। सडन राइस, कोई भी खाना जो सडन सुक्रोज देगा, फ्रक्टोज देगा, वो हमेशा शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। तो जितने स्वीटेंड होते हैं इसमें हाई मात्रा में शुगर होती है, तो ये अभी जंक फूड के श्रेणी में आएंगे।
1: क्या जंक फूड की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है, और अगर होती है तो क्या?
2: न्यूट्रिटिव वैल्यूज में कैलोरीज बोले तो इट इज फुल ऑफ हाई कैलोरी डेंस फूड, बट यदि हम विटामिन मिनरल्स बोले तो ऑलमोस्ट निल, दे डोंट हैव एनी विटामिन मिनरल्स। तो न्यूट्रिशनली ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं।
1: ऑलमोस्ट जंक फूड तो शायद हर इंसान खा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? और फिर ये चीज सोसाइटी में जिस तरह से फैली है बुराई, तो उसको कैसे बाहर आया जाए इससे?
2: देखिए, चीटिंग डे सबने सुना है, तो सर्विंग पर वीक हफ्ते का एक, शायद एक मील अलाउ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ऑलवेज ऑलवेज वी शुड गो विथ होम बेस्ड फूड। और यदि हम बच्चों के लिए एनफोर्स करें नहीं तुम जंक फूड मत खाओ, तो पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ही घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चों को यदि हमने आदत डाली है तो हमें काम रहना पड़ेगा, हम एनफोर्स नहीं कर सकते। स्लोली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते, बट विद टाइम बेबी एडजस्ट होता है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द होम फूड। बट सबसे पहले हमसे शुरुआत होगी, तो हमें भी हफ्ते का एक, यस, नेग्लिजिबल, वो भी उसमें हमें देखना चाहिए कि एनर्जी जो कंटेंट है दैट शुड बी लेस देन 10%, द फैट कंटेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। तो आइडियली जंक फूड को हमारे से ना शुरुआत होगी, तब बच्चों को हम ना कर पाए। होम बेस्ड फूड बनना चाहिए, घर पे बनना है, पैक्ड फूड मना करना। इवन जितने आपके चिप्स पे होते हैं ये पाम ऑयल में बनते हैं। पाम ऑयल सबसे घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है एज कम्पेयर टू, यदि हम यूएसए के देखें, दे मेक द एवरी चिप्स इन सनफ्लावर ऑयल, और ये हमारे पाम ऑयल जो कई बार यूज होके रिफाइंड कुकिंग हो चुकी होती है शायद, तो ये हमें सबसे जरूरी है। हम लीफलेट्स देखेंगे तो दे आर मेड ऑफ पाम ऑयल, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड विथ लो ग्रेड। एक आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स आगे लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीजेस कराते हैं, और पाम ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जिसे सबसे कम मात्रा में करना चाहिए। यही सनफ्लावर देखेंगे वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें हार्ट डिजीज की चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयल्स चेंज करके खाना चाहिए। पर ये जितने जंक फूड्स हैं इसकी जो ऑयल कंटेंट है दे आर ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, सो वन शुड अवॉइड।
1: जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उसके क्या नुकसान क्या होते हैं, अगर जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उन्हें?
2: जैसे जंक फूड का मैंने बताया हाई कैलोरी डेंस, हाई एनर्जी है, तो जब बच्चा ज्यादा एनर्जी ड्रिंक फूड्स, एनर्जी खाना खाएगा तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और यदि बच्चे में मोटापा होगा, आज की लाइफ में आप देख रहे हैं फिजिकल जो एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना, सेडेंटरी लाइफ ज्यादा हो गई है, क्योंकि मोबाइल्स हो गए, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में ओबेसिटी की मात्रा बहुत बढ़ गई। ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी लॉन्ग टर्म में डायबिटीज कराना, हाइपरटेंशन कराना, हार्ट डिजीजेस कराना, ये नोन है। इन सबको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो आइडियली इसीलिए हाई कैलोरी डेंस फूड हटाना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं ऑलमोस्ट उसमें मान के चलिए कि 10-15% प्रोटीन होना चाहिए, 10-15% फैट होना चाहिए, 55% आपका कैलोरी होना चाहिए यानी एनर्जी होनी चाहिए। तो यदि हम बहुत फैट फूड खाएंगे, जो ये जंक फूड्स में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ये मोटापा कराएगा। मोटापा से लॉन्ग टर्म में अडल्ट डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत कॉमन है। दूसरी और चीजें जैसे मैंने आपको बताया, स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं। स्वीटेंड ड्रिंक्स डेफिनेटली डेंटल कैरीज यानी दांतों में नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रिजर्वेटिव्स हैं, यदि प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो एलर्जीज कराएंगे। इसके साथ में कितना अनहाइजीनिक खाना हम कई बार खाते, जैसे आपने बताया पिस्ता पास्ता, ये सब हम जब ठेले या ऐसे भी कोई जगह से खाएंगे तो हमें स्वाभाविक से दस्त, उल्टी, जीआई इन्फेक्शंस के भी रिस्क रहेंगे। तो ये जंक फूड्स के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं कि आइडियली यदि हमें अडल्ट लाइफ अच्छी जीनी है तो शुरुआत से हमारी लाइफ में ऐसे इनकलकेट करना चाहिए जिसमें होम बेस्ड फूड खाएं।
1: ठीक है जी, जंक फूड के कुछ अल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि जंक फूड जो कि लोगों में बहुत आदत पड़ता है, अल्टरनेटिव फूड है कोई जंक फूड?
2: यस, यदि हमें जैसे घर पे है छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का, तो उपमा है, इडली है, मैश्ड पोटैटोज है, खीर है, साबूदाने की खीर बना के देख सकते हैं। यदि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वेजिटेबल्स, तो हमें घर के ही फूड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को इनकलकेट करना चाहिए। यदि हम घर पे हलवा बना रहे हैं या हम थोड़ा हैवी फैट ले रहे हैं तो उसे मान के चलिए 10% होना चाहिए टोटल एनर्जी का, पर ये देना है। तो हमें घर के बने खाने जैसे मैंने आपको बताया ये ज्यादा ऑल्टरनेटिव है रादर देन दिस जंक फूड।
1: आज का जो परिवेश रहन सहन है, माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिसके कारण शायद वो भी बहुत जंक फूड खा रहे हैं और इसीलिए उनके बच्चे भी खा रहे हैं।
2: बिल्कुल, दोनों वर्किंग पेरेंट्स रहने लग गए, मुश्किल होती है घर पे बनाए कौन। हाँ। तो ये एक रीजन है, लेकिन फिर भी हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। तो हमें किसी तरह समय निकाल कर घर का बना खाने की हमें भी हैबिट और बच्चों में भी डालनी पड़ेगी।
1: जो हम घर का खाना खाते हैं उसमें दाल चावल रोटी सब्जी आती है, वो कितनी अच्छी है, कितनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कंपेयर अगर जंक फूड से करें तो?
2: एक शब्द है कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड यानी कि एक ऐसा फूड जो रेनबो, आपने सुना होगा 7 रंग, तो हमारे खाने में कुछ रंग कैलोरीज के, कुछ रंग फैट, कुछ रंग प्रोटीन के, कुछ विटामिन मिनरल और सबसे ज़रूरी पानी। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि बेस्ट ड्रिंक जो आज की दुनिया में प्योर क्लीन वाटर है।
1: ठीक है,
2: जितना पानी हम पिएंगे ये सब जो जूसेस छोड़कर, यदि फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये पानी हमारे लिए पूरे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो ये पानी ही सबसे अच्छा पेयजल है जो बेस्ट है, इन सब फूड्स को रिप्लेस करता है।
1: घर की बनी हुई पूरी है या हलवा है उसको कैसे देखें, क्या उसको जंक फूड की श्रेणी में रखें या नहीं रखें, या वो कैसी है बच्चों की?
2: बस फैट का ध्यान रखना है, घी हमारे लिए भी जरूरी है, घी इतनी मात्रा में रहे कि 10% रहे जैसा मैंने आपको बोला, तो देना है कम फैट में पर देना है।
1: जैसे आपने जिक्र करा था कि डायबिटीज कहा आपने, कैंसर का भी नाम लिया, तो क्या इस तरह की बीमारियां जो हैं वो जंक फूड के कारण होती हैं?
2: Yes.
1: और वो बच्चों में भी होती हैं?
2: अभी रिसर्च स्टडीज, रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अडल्ट्स में नोन रिजल्ट्स मिल गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स ने ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास में एसोसिएशन, अभी बच्चों में स्टडीज नहीं आई। पर क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, जब हम लंबे समय वही प्रिजर्वेटिव खाएंगे तो हमें कैंसर के रिस्क ज्यादा है, बच्चों में अभी नहीं पाया गया।
1: बहुत कम उम्र के 12-13-14 साल के रेगुलर कॉफी पीने लगे हैं या चाय पी रहे हैं या इस तरह के, तो उनका मसला रहता है कि तो उसकी आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: जो बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट है, नींद भगाने के लिए वो चाहते हैं कि शायद मैं कॉफी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, मेरी नींद भाग जाए, ये बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि हम फॉल एस्लिप होंगे क्योंकि हमारी निद्रा तो हमें ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस टी कैफीन ये सबसे हार्ट रेट में इफेक्ट करता है, रिदम डिस्टर्बेंसेस कराता है, इवन कुछ बच्चों में डिप्रेशन साइकोसिस भी कराता है। तो यदि हमें कभी ऐसा लग रहा है तो चाय कॉफ़ी से अच्छा हमारा पानी या फ्रेश जूसेस है। सो टी एंड कैफिनेटेड शुगर्स, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली इन अडोलोसेंट एज ग्रुप जो 13-14 साल के हैं, जहाँ हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी भावना है कि अरे मैं पी लूँगा तो मेरी नींद भागेगी, नींद नहीं भागेगी, 2-3 घंटे में आप फिर स्लीप होने लगोगे, तो नुकसानदेह ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस और ड्रिंक्स करें, मतलब दैट इज प्योर क्लीन वाटर।
1: आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी, वो क्या हैबिट्स या किस तरह के तरीके अपनाएं जिससे जंक फूड से निजात मिले?
2: कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले तो स्टे काम। बच्चा नहीं खा रहा तो ये नहीं कि आप एंग्री हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, कभी भी आप फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, नेवर ट्राई। धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज की आदत बदलने में समय लगेगा, तो ये ना सोचे कि आज ही किया और अगले दिन से नहीं। धीरे धीरे इंटरमिटेंटली हमें कम करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें हेल्दी फूड अराउंड रखना है, हमें वो जंक फूड घर पे रखना ही नहीं है, ताकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने आपको पता है, हमें रोल मॉडल बनना, बी अ रोल मॉडल। चिल्ड्रन हमें साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली वही देख रहे हैं, तो यदि हम हेल्दी फूड लेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। हमेशा एक हेल्दी फूड से स्टार्ट करिए, ये नहीं कि मल्टीपल एक साथ बॉम्बार्ड कर दे। ऑलवेज स्टार्ट विथ वन हेल्दी फूड एट वन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चीयरफुल वे में इंट्रोड्यूस किया जाए, एंजॉयमेंट के साथ में। हमेशा एक अपीयरेंस ऑफ टेस्ट जो, और दिखने में थोड़ी कलरफुल, अच्छे से उसको सुंदर बनाया जाए, ताकि वो बच्चे को लगे हाँ ये खाने में उसे इंटरेस्ट तो आए। तो हमें घर पे ही टेस्टी एंड अपीयरेंस टू बी मॉडिफाइड। इंटरमिटेंट स्नैकिंग, अरे बीच में दे रहे हैं, नहीं वो नहीं, अवॉइड करना है। 3 हेल्दी मील डाइट्स होने चाहिए, 2 टाइम के स्नैक्स होने चाहिए, ये एक बेसिक हम रूटीन खाने का रखना चाहिए। एंड ऑलवेज बच्चे को भी आप इन्वॉल्व करो खाना बनवाने में। यदि हमने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसे लगा हाँ मैंने हेल्प की है, मैंने बनाया, तो शायद ये सब टर्स जब हम इनकलकेट करें हमारी लाइफ में, तो बच्चे शायद जंक फूड से दूर हो जाएंगे।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, जब बच्चा खुद बनाने जाएगा तो शायद समझ में आएगा कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल लेके वो पत्ता गोभी को काटते हैं तो कई बार उसमें कोई कीड़ा निकलता है, तो संभवतः वो खुद ही समझ पाएगा कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हम उस कीड़े को या सब्जी को अलग कर देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: सामान्यतः बाजार में ऐसा ना होता हो, इस पर क्या कहेंगे?
2: इवन वॉशिंग ऑफ आपकी सब्जियां हो रही कि नहीं वो भी नहीं हमें पता है। इतनी बीमारियां जैसे कि एल्बेंडाजॉल, जो हम आजकल एक डेली वॉर्म के लिए एनुअल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है कि एंटी हेलमिंथिक, यानी बच्चों को जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, हम साल में हर बच्चों को स्कूल से टैबलेट्स मिलती हैं, क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ये जो सब्जियां नहीं धुली हुई हों, अंदर कीड़े चले गए तो बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बाहर का खाना कितना साफ होगा, यू डोंट नो।
1: आइसक्रीम जंक फूड की श्रेणी में है या नहीं है? अगर है तो क्या उसके नुकसान है?
2: बिल्कुल, आइसक्रीम भी प्रिजर्वेटिव है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि वो एक तरह से जो भी प्रिजर्वेटिव है जंक फूड्स में आते हैं। आइसक्रीम आप देखेंगे तो सडन सुक्रोज या सडन फ्रक्टोज रिलीज करते हैं। जो भी खाना तुरंत सुक्रोज या फ्रक्टोज रिलीज करेगा वो हानिकारक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शब्द होता है जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले खाने वो बहुत अच्छा, और आइसक्रीम सिंपल कार्बोहाइड्रेट सडन ग्लूकोज रिलीज करती है, हमारे इंसुलिन को बॉम्बार्ड करती है और वो नुकसानदेह। इवन आइसक्रीम यदि हम घर पे बनाए विद फ्लेवरिंग एजेंट्स ना डालें, जैसे हमें लगता है वनीला फ्लेवर एसेंस डालते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, तो हम घर पे ही मतलब बना सके तो बिल्कुल खाना।
1: आपने जोर जो दिया वो घूम फिर के आ रहा है कि स्ट्रेस बर्ड्स होते हैं, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, ठंडा हो, ये सामान्यतः पसंद आते हैं, और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण ही आदमी जंक फूड की तरफ जाता है।
2: बिल्कुल,
1: उनके अल्टरनेटिव्स आपने कुछ बताए, हम चाहेंगे कि वो आप अल्टरनेटिव्स और विस्तार से बताएं कि लोगों को एक सीधा संदेश जाए कि ये ना खाओ, ये तो हम कह रहे हैं लेकिन क्या क्या खाओ।
2: आपने एक बहुत अच्छी बात कही टेस्ट बर्ड्स की।
1: हाँ।
2: क्या होता है, शुरुआत के 6 माह तक सब माएँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, यानी बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे है। जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो माँ के दूध से पूरी नहीं हो सकती है, तो ऐसे समय में एक कॉम्प्लीमेंट्री आहार, यानी बच्चे को अपार्ट फ्रॉम मिल्क कुछ ऐसे खाने देने होंगे जो उसको मिल्क के अलावा जो उसको कैलोरीज दें, उसकी पूर्ति बाकी कर सके। ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है कि हम फूड इंट्रोड्यूस करें। जो बच्चे 6 माह के बाद धीरे धीरे, कई माँ होती हैं जो 9-10 महीने तक दूध कर रही हैं और खाना ही नहीं खिलाए, उन्हें लगता है दूध ही पूर्ति कर, ऐसे बच्चे फसी ईटर होता है। जब ये फसी ईटर होता है मतलब ये बच्चे खान, क्योंकि टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं हुए जो 6 माह में होने थे। हाँ। तो ऐसे फसी ईटर्स वाले बच्चे जंक फूड की तरफ, माँ को लगता है लाओ ये तो खा लेगा, और क्या होता है मैंने आपको बताया ना, ये एडिटिव फ्लेवर, ये एडिक्शन का काम करता है। एक बार बच्चे को लत लग गई तो उसको वो पैकेट पैकेट, वो पैकेट क्यों खा रहा है, क्योंकि वो एडिटिव ड्रग्स जो एडिटिव उसमें डाली जाती है चीज़ें, वो एडिक्शन है। तो हमें यदि शुरू के 6 माह में यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड ढंग से स्टार्ट किया जिसमें बच्चे के टेस्ट बर्ड डेवलप हो गए, चाहे वो मीठा हो गया, नमकीन जैसा आपने बोला, ये हमें शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक मतलब कुछ खान पान आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे आपसे मैंने कुछ बताया था कि खिचड़ी हो गई, दलिया, सूजी खीर हो गई, मैश्ड पोटैटोज हो जाएंगे, बनाना, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उपमा हो गया, मैश्ड इडली हो गई, दही, ये सब हम यंग बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा पूरा खाना उतनी जल्दी या वो प्रेरित रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा खाना खाना है। हमने लेट इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो बच्चा मोर ऑफ अ जंक फूड की तरफ डाइवर्ट होता है। थोड़े और बच्चे बड़े हों तो रोटी, दाल, चावल, थाली का पूरा खाना, जैसे मैंने आपको सात रंगों का बताया, वो हमें जुड़ना चाहिए।
1: अगर हम बात करें, अगर दो धड़ों में बांटें, जैसा कि हमारा देश बटा हुआ है एक अर्बन और रूरल में, गांव और शहरों में, तो जंक फूड का असर आप कहाँ ज़्यादा देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। रूरल और अर्बन डिविजन्स थे, पर अब ओबेसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, जंक फूड ओबेसिटी कराता है ना। रूरल कम्युनिटी जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जंक फूड ने अपने पाँव रूरल एरिया में भी नहीं छोड़े हैं, वहाँ भी एनक्रोच कर लिया। तो आप फूड पैकेट्स कहीं पर भी देखोगे, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ भी अवेलेबल है। तो बच्चे तो वही हैं, टेस्ट बड्स भी वही हैं। तो यदि हमने वहाँ तक रूरल एरिया भी नहीं छूटा है जहाँ पे हम पैक्ड फूड्स हर जगह मिल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी, हाँ, क्योंकि अर्बन पहले से स्ट्रीमलाइन है, यहाँ ऑनलाइन डिलीवरीज ज़्यादा होती है, तो जंक फूड की मात्रा नो डाउट अर्बन में, पर ये नहीं है कि रूरल वाला वंचित है। आज वहाँ पर भी जंक फूड्स के इंसिडेंसेस खूब हैं। एक मैं और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग को लगता है रेडी टू यूज़ फूड्स, लाइक जो कॉर्न मक्के के, उसके साथ कॉर्न सिरप डलता है। अच्छा। कॉर्न सिरप जैसे ही डलता है तो वो एक तरह से सुक्रोज और फ्रक्टोज का काम करता है। ब्रेड, ब्रेड क्या होती है, ये भी एक तुरंत रिलीज करती है शुगर्स को। अच्छा। और ब्रेड्स भी बिल्कुल हानिकारक है, ब्रेड्स मैदा से बनती है, जितनी मैदा वाली चीज़ें होंगी वो भी एक तरह से जंक फूड में श्रेणी में आती है। तो इसीलिए रोटी या जो हम गेहूं से बनाई चीज़ें थी वो बेनिफिट रहती है।
1: हिंदुस्तानी जो बाहरी खाना था, मसलन जैसे हमने बात करी कचौरी, समोसे या चाट की, उनके ही नुकसान बताए जाते थे, तो लेकिन अब पैक्ड फूड उनके का अगर कंपैरिजन करें इनका, तो वो क्या कंपैरिजन होगा?
2: वो भी जंक फूड में ही आएंगे, जो पैक्ड फूड्स है। हाँ। मैंने आपको जंक फूड बताया, जंक्स में इतनी बड़ी कैडर हो गई है जो सडन रिलीज, देखिए समोसा मैदा का बना है, उसके अंदर भरा है आलू है। तो एक तरह से वो हानिकारक होगा, उसकी आप कैलोरी डेंसिटी देखोगे बहुत हाई है, और सडन वही मैदा से बना है, तो ये सारी चीज़ें जो सडन रिलीज करती है हमारे इंसुलिन लेवल्स को, वो कहीं ना कहीं जंक फूड्स में आते हैं, तो समोसा भी उसी कैडर में आता है।
1: तो मैडम चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगी जंक फूड खाने वालों को?
2: जंक फूड्स खाने वालों का मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज, की होम मैसेज है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो घर का बना खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, जूसेस पीना हो तो घर के फ्रेश जूसेस निकाल के, फ्रेश फ्रूट्स के निकाल के जूसेस पिएं। और बहुत लगता है नहीं कभी तो खाना है, तो हफ्ते का एक डे अलाउड है, वंस अ वीक।
1: तो डॉक्टर श्वेता आनंद हमारे साथ मौजूद थी और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतने विस्तार से बड़े डेफिनेट शब्दों में मैडम ने अपनी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी स्टूडियो में आने के लिए।
2: थैंक यू।
1: तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का जनक देश के लिए।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: जीवन में कुछ ऐसे भी कालखंड आते हैं जब जीवन अबाध रूप से नीरसता के एक भयंकर स्रोत के रूप में बहता चला जाता है। खाना, सोना और बातें करना, इन्हीं का उबाऊ चक्र चलता रहता है। अति साधारण घिसे पिटे विचार और रोजमर्रा की जिंदगी। फिर कोई दुखद घटना घटती है और हमें झटका देकर क्षण भर के लिए स्तब्ध कर देती है, परंतु हम शांत नहीं रह सकते। दुख या सुख कोई भी हमारे जीवन के इस दोल चक्र को रोक नहीं पाता। जीवन निश्चित रूप से केवल इतना ही नहीं है, हम केवल इतने भर के लिए यहां नहीं हैं। बेचैनी होती है, हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: फिर एक दिन वो हो जाता है, वे अद्भुत चीजें जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जो हमारी जानलेवा नीरसता को दूर करके हमारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है, और जो अंततः हमें एक सुदूर देश में ले जाकर भिन्न प्रथाओं वाले जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे अद्भुत अजनबी लोगों के बीच स्थापित कर देती है, जो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है तथा वे किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ से ही उनके प्रति एक विचित्र आत्मीयता का बोध करने लगते हैं, और तब हमारी बेचैनी सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती है।
0: स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उस वक्त वहां संपन्नता तो थी, पर लोगों की आध्यात्मिक भूख को मिटाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उस विराट धर्म महासभा का आयोजन हुआ, जहां सभी देशों में से सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए, अपने अपने धर्मों के बारे में बताया, पर कोई भी वक्ता वहां के लोगों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया।
1: अंत में स्वामी जी बोले, भारत की वाणी और संदेश सुनाया, वेदांत की, उपनिषद की व्याख्या की। उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं की, बल्कि वहां के लोगों को बताया कि सार्थक जीवन जीना किसे कहते हैं। लोग चकित हो गए, अपार भीड़ उमड़ने लगी इस नवीन सन्यासी को सुनने के लिए। लोगों को लगा उन्हें वो पथ मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। भगिनी क्रिस्टीन उन्हीं में से एक थी। उनके कुछ संस्मरण आपने सुने हैं, अब आगे की सुनिए।
2: जून के प्रारंभ में 3-4 लोग सहस्त्र द्वीपोद्यान में उनके साथ एकत्र हुए और शिक्षा का कार्य अविलंब आरंभ हो गया। वे शनिवार 6 जुलाई 1895 को वहां आए थे। अब तक जो लोग वहां पहुंचे थे, स्वामी जी ने उनमें से कुछ को सोमवार को दीक्षा देने का निश्चय रखा था। रविवार को अपराहन में उन्होंने हम लोगों से कहा, मैं तुम लोगों को अभी तक इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम दीक्षा के उपयुक्त हो या नहीं। इसके बाद उन्होंने थोड़े सलज्ज भाव से कहा, मुझ में एक शक्ति है, मन को पढ़ने की शक्ति, जिसका मैं कदाचित ही उपयोग करता हूं। यदि स्वीकृति दो तो मैं तुम्हारे मनों को पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि कल मैं अन्य लोगों के साथ ही तुम दोनों को भी मंत्र दीक्षा देना चाहता हूं। हमने सहर्ष सहमति दे दी। अपनी इस परीक्षा के फल से वे अवश्य संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि अगले दिन कुछ अन्य लोगों के साथ ही हमें भी मंत्र देकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बाद में ये पूछे जाने पर कि हमारे मन की परीक्षा के समय क्या देखा, उन्होंने हमें थोड़ा सा कुछ बताया था।
0: वे बार बार जो भी भविष्यवाणी करते थे वही फलीभूत होता था। उनके शिष्य अवाक हो जाते थे।
2: उन्होंने देखा था कि हम में से एक का जीवन भारत के साथ अविच्छेद्य भाव से जुड़ जाएगा। उन्होंने हमारे बारे में महत्वपूर्ण तथा सामान्य अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से लगभग सभी सत्य प्रमाणित हुए हैं। उन्होंने देखा था कि हम लोग उनके विश्वस्त होंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसका कुछ कुछ वर्णन किया, हर चित्र की व्याख्या नहीं की। एक व्यक्ति के बारे में उनके सम्मुख दृश्य पर दृश्य आते गए, जो दर्शाते थे कि उसे काफी भ्रमण करना होगा, संभवतः प्राच्य देशों में। उन्होंने इन सब का वर्णन किया, जिन घरों में हम रहेंगे, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क होगा और जो चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी।
1: स्वामी जी भविष्य दृष्टा भी थे। वे जो भी भविष्यवाणी कर गए थे सभी सच साबित हुई।
2: हमने उनसे इस शक्ति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसकी प्रक्रिया कम से कम बताते समय तो बड़ी ही आसान लगी। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथा सामान्य घटनाएं भी पहले ही बता दी गई और लगभग सभी सत्य हुए। इस परीक्षण में व्यक्तित्व की विशेषता, उसका स्वभाव, उसकी क्षमता और उसका चरित्र प्रकट हो जाता था। इस परीक्षा में खरा उतरने के बाद अपने बारे में कोई हीन भावना या आत्मविश्वास का अभाव नहीं रह सकता था। प्रत्येक क्षणिक शंका के स्थान पर एक प्रशांत आश्वासन आ जाता था, क्योंकि क्या इसमें हमारे व्यक्तित्व पर उन अलौकिक व्यक्ति की स्वीकृति की मुहर नहीं लग गई थी।
0: सहस्त्र दीपोद्यान का वर्णन क्रिस्टीन ने बहुत ही रोचक ढंग से किया है।
2: सहस्त्र द्वीपोद्यान पार्क हजार द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा है और 9 मील लंबा तथा 1 या 2 मील चौड़ा है। नदी के किनारे स्थित गांव के पास स्टीमर ठहरते हैं। उन दिनों उस द्वीप का बाकी भाग करीब करीब निर्जन ही था। हमें जिस मकान में जाने का निर्देश था वो गांव से 1 मील दूर था। ये एक चट्टान पर बना था। क्या ये सांकेतिक संयोग था? सामने से ये 2 मंजिल और पीछे से 3 मंजिल ऊंचा था। ये घने जंगलों से घिरा था। निर्जन में होने के बावजूद इसमें हमारी आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध थी। हम लोग एक दूसरे से मिले बिना भी चारों दिशाओं में घूम सकते थे। कभी कभी स्वामी जी केवल लैंडमार्क को साथ लेकर टहलने जाते थे, फिर कभी वे हम में से किसी 1 या 2 को साथ चलने के लिए कहते और यदा कदा पूरा दल उनके साथ होता।
1: स्वामी जी कहानियां सुनाकर उन लोगों का मनोरंजन करते थे। हास परिहास करने में तो वे पारंगत थे ही।
2: उनके पास रोचक कहानियों का भंडार था, जिसमें से कुछ वे बारंबार सुनाया करते थे। उनमें से एक थी एक मिशनरी के बारे में, जिसे धर्म प्रचार के लिए नरभक्षियों के द्वीप में भेजा गया था। वहां पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों से पूछा, मेरा पूर्ववर्ती आप लोगों को कैसा लगा? इस पर उसे उत्तर मिला, वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वे नरभक्षी जो थे। फिर स्वामी जी उस महिला की कहानी भी सुनाते, जिसने पूछा था, स्वामी जी क्या आप बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट यानी बौद्ध पर उच्चारण दोष के कारण अर्थ निकलता है बुद्धिस्ट यानी कली, कलियों के विक्रेता। इस पर उन्होंने व्यंग पूर्वक मगर गंभीर मुद्रा बनाकर कहा था, नहीं मैडम, मैं तो एक फ्लोरिस्ट हूं यानी फूल बेचने वाला। फिर उस युवती की कथा भी सुनाते, जो उसी भवन में निवास करती थी जिसमें लैंड्सबर्ग के साथ स्वामी जी रहते थे। उस भवन के सभी लोग एक ही रसोई घर में भोजन पकाते थे। उसका पति एक प्रेतात्मावादी मीडियम था और लोगों के समक्ष प्रेतों का आह्वान किया करता था। उस युवती की प्रायः ही अपने पति के साथ झड़प हो जाती। ऐसी झड़पों के बाद वो सहानुभूति पाने के लिए स्वामी जी से पूछती, मेरे साथ उसका ऐसा दुर्व्यवहार क्या उचित है, जबकि सारे प्रेतों के रूप में तो मैं ही प्रकट होती हूँ। स्वामी जी लैंड्सबर्ग से अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सभा में लैंड्सबर्ग का शैतान के बारे में व्याख्यान हो रहा था। उसके सामने की ही कुर्सी पर लाल वस्त्र पहने एक महिला बैठी थी। लैंड्सबर्ग बीच बीच में बड़ा जोर देकर शैतान शब्द का उच्चारण करते और जब जब ऐसा होता तब तब निश्चित रूप से उनकी एक उंगली लाल वस्त्र पहनी महिला की ओर उठ जाती।
0: स्वामी जी अक्सर अपने पश्चिमी शिष्य शिष्याओं के साथ अपनी बचपन की बातें साझा किया करते थे। शिष्यों को भी भारतीय जीवन और परंपराओं की झांकी मिलती थी।
2: कभी कभी वो हमें भारतीय जीवन के बारे में बताते कि किस प्रकार जब वे एक छोटे बालक थे तब भी गेरुआ वस्त्र उन्हें इतना अधिक आकृष्ट करता कि उनकी गली में कोई साधु संन्यासी आता तो उनके हाथ में जो कुछ भी होता वो सब कुछ दे डालते। ऐसा कोई व्यक्ति मोहल्ले में आता तो उनके परिवार के लोग उनके कमरे में ताला लगा देते। तब वे खिड़की से ही चीजें फेंक देते। कभी कभी जब वे ध्यान में बैठते तो उनकी बाह्य चेतना पूर्णतः लुप्त हो जाती। परंतु उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था। जब वे शैतानी करने लगते तो उनकी माँ उन्हें पकड़कर नल के नीचे बैठा देती और कहती, मैंने शिवजी से एक भूत मांगा था और उन्होंने अपना एक भूत भेज दिया। भविष्य में जो शक्ति पूरे भारत को हिला देने वाली थी, उसे सहज ही वश में नहीं किया जा सकता था।
1: उनकी बातों को शिष्यगण बड़ी उत्सुकता से सुनते। इसके पहले उन्होंने किसी धर्म गुरु के मुंह से ऐसी रोचक कहानियां नहीं सुनी थी।
2: जब उनके गृह शिक्षक आकर उन्हें पढ़ाने लगते तब वे आंखें बंद किए मूर्ति के समान बैठे रहते। नाराज शिक्षक चिल्लाते, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे पढ़ाते समय तुम सो जाते हो। इस पर वे अपनी आंखें खोलकर शिक्षक को विस्मय में डालते हुए सारा पाठ ज्यों का त्यों दोहरा डालते। उनकी इस कहानी पर विश्वास करना कठिन नहीं था, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। किसी के द्वारा इस पर टिप्पणी किए जाने पर उन्होंने कहा था, हाँ मेरी माँ की भी ऐसी ही स्मृति है। एक बार रामायण सुनने के बाद वो उसे यथावत सुना देती है। एक बार जब स्वीडन के इतिहास के किसी बिंदु पर बोल रहे थे, उस समय वहां का स्वीडन निवासी भी सुन रहा था और उसने स्वामी जी के कथन में कुछ भूल निकाली। स्वामी जी अपने तथ्यों के बारे में इतने निश्चित थे कि वे मौन रहे। उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन वो स्वीडन वासी शर्मिंदा सा उनके पास आया और बोला, स्वामी जी मैंने जाकर इस विषय में खोजबीन की और पाया कि आपका कहना सही था। ऐसे प्रमाण हमें बारंबार मिले हैं। अच्छी स्मरण शक्ति को वे आध्यात्मिकता का एक लक्षण मानते थे।
0: स्वामी जी माँ को पूजते थे। बहुत ही सम्मान के साथ वे माँ की बातें किया करते थे। कहते थे, माँ को बहुत दुख दिया है मैंने, मैं एक बुरा बेटा हूं, माँ को कोई भी सांसारिक सुख नहीं दे पाया मैं।
2: वे अपनी छोटी सी परंतु स्वाभिमानी माँ के बारे में बहुत सी घटनाएं सुनाते थे कि किस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपने भावों तथा स्वामी जी के बारे में अपने गर्व को छिपाने का प्रयास करती हैं, किस प्रकार वे उनके चुने हुए मार्ग के प्रति अपनी असहमति और उनके द्वारा अर्जित प्रसिद्धि में गौरव बोध के बीच द्वंद्व में पड़ी रहती है। प्रारंभ में वे चाहती थी कि उनका पुत्र विवाह करके परंपरागत सांसारिक रूप से एक सफल जीवन बिताए, परंतु उन्हें ऐसे दिन देखने को मिले जब उनका सर्वत्यागी पुत्र सम्मानित हुआ और राजा महाराजा तक उनके समक्ष नतमस्तक हुए। परंतु इस दौरान उन्हें बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अनेक वर्षों बाद उनसे पूछा गया था कि शिशु के रूप में स्वामी जी कैसे थे, तो इस पर वे बोल उठी, मुझे उसे संभालने के लिए दो दाइयां रखनी पड़ती थी।
1: और अब माँ भुवनेश्वरी देवी की यादें।
2: हम में से जिन लोगों को उनकी माँ से मिलने का सौभाग्य हुआ था, वे जानते हैं कि स्वामी जी को अपना राजसी व्यक्तित्व अपनी माँ से ही विरासत में मिला था। इन छोटी सी महिला का चाल चलन एक महारानी के समान था। बाद के वर्षों में अमेरिका समाचार पत्रों ने उनके बारे में उनके पुत्र का उल्लेख राजा सदृश सन्यासी विवेकानंद के रूप में किया था। उनमें एक कुमारी जैसी पवित्रता थी और लगता था मानो वे उसे दूसरों में भी संचरित कर देने में सक्षम है। यही संभवतः उनका महानतम उपहार था। परंतु स्वामी जी जैसे महापुरुष को क्या एक उपयुक्त परिवेश मिल सकता था? भारत और ऐसे माता पिता से उन्हें काफी संतोषजनक रूप में वो प्राप्त हुआ। अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम कितना अगाध था। अब वे भारत के अन्य प्रांतों में भ्रमण कर रहे होते तो कभी कभी उनके मन में आशंका होती कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और वे उनके बारे में सूचना मंगवाते, या फिर यदि बेलूर में रहते तो तत्काल का संदेशवाहक भेज देते। अपने अंतकाल तक उनकी एक प्रमुख चिंता थी कि किस प्रकार माँ की सुविधा और देखभाल की व्यवस्था की जाए।
0: और अब सुनिए बचपन की यादें, पिता की बातें।
2: इस प्रकार कई दिनों तक हम लोगों के लिए कोलकाता के शिमला अंचल में स्थित उनके पिता के मकान में बिताए गए। उनके बचपन के दिन सजीव हो उठते थे। अपनी बहनों के लिए उनके मन में विशेष प्रेम था और पिता के प्रति श्रद्धा का भाव था। इनका उल्लेख भी बारंबार आ जाता था। उन्होंने कहा था, अपनी मेधा तथा दया भाव के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ। वे बताते कि कैसे उनके पिता ये जानते हुए भी कि वो इन्हें किस काम में लाएगा, एक शराबी को पैसे देते और अपने बचाव में वे कहते, ये जगत इतना भयंकर स्थान है कि यदि वो किसी प्रकार इसे कुछ समय के लिए भूल जाता है तो उसे वैसा ही करने दो। उनके पिता धन खर्च करने में बड़े उदार थे। एक बार जब वे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक खुले हाथ से खर्च कर रहे थे तो उनके किशोर पुत्र ने पूछा, पिताजी आप मेरे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? पिता बोले, जाओ दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़कर जाऊंगा।
1: अपने गुरु के बारे में स्वामी जी का मत सुनिए। क्रिस्टिन कहती हैं,
2: अपने गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति अपूर्व थी। प्रेम और निष्ठा जैसे शब्दों को नए अर्थ मिले। उनके भीतर उन्होंने ईश्वरत्व का जीवंत रूप देखा और पाया कि उनके भावों के अनुसार उनका शरीर भी रूपांतरित हो जाता है। उनके अशिक्षित होने के बावजूद स्वामी जी ने कहा था, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनमें वे ही सर्वाधिक मेधावी थे। ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने असाधारण बौद्धिक उपलब्धि वाले लोगों को भी विस्मय में डाल दिया था।
0: धर्म महासभा के बारे में सभी जानते हैं, भगनी क्रिस्टीन ने भी वही सुनाया।
2: एकाकी और बिना किसी पूर्व सूचना के वे अमेरिका महाद्वीप में गए। धर्म महासभा में अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने पहले कभी व्याख्यान नहीं दिया था, केवल अनौपचारिक रूप से अपने आसपास बैठे लोगों की छोटी टोलियों को उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ बोला हुआ था। फिर अन्य लोगों के भांति मैं अपना व्याख्यान लिखकर भी नहीं लाया था। मैं अपने गुरुदेव तथा वाक्य देवी सरस्वती का स्मरण करते हुए खड़ा हो गया। मैंने आरंभ किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, परंतु मैं इसके आगे नहीं बढ़ सका। तालियों की गड़गड़ाहट के कारण मुझे रुक जाना पड़ा था। लगता है कि श्रोताओं ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि इस अद्भुत स्वागत से उनके हृदय में कैसी भावना उमड़ी, कैसा विस्मयुक्त रोमांच उत्पन्न हुआ। उन्होंने पहले से भी अधिक प्रबलता के साथ अपने पीछे स्थित शक्ति का अनुभव किया। उस दिन से अपने ईश्वर आदिष्ट होने के विषय में उनके मन में कभी कोई शंका नहीं उठी। वे वेदांत के एक अग्रदूत प्रथम प्रचारक थे। उनकी आध्यात्मिकता सब में विस्मय उत्पन्न करती थी। लोग पूछने लगे, जिस देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं वहां मिशनरियों को भेजने की क्या जरूरत है।
1: अब सुनते हैं भगिनी क्रिस्टीन से स्वामी जी के कुछ उद्गार जो उन्होंने अमेरिका में विभिन्न भाषणों में कहे थे।
2: कुछ महान विचार याद रह जाते हैं इसीलिए नहीं कि वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नवीन तथा अद्भुत होते हैं। और उस समय ऐसा ही हुआ जब स्वामी जी ने याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी की कथा सुनाने के बाद अंत में कहा, वस्तुतः पति के लिए नहीं अपितु पति में निहित आत्मा के लिए ही उससे प्रेम किया जाता है।
3: ये विचार हमारे लिए बिल्कुल नया था कि सभी प्रेम एक ही हैं और हम पुत्र पिता माता पति पत्नी मित्र

0: कुछ और याद रखने वाली बातों के बारे में हमें क्रिस्टीन ने बताया। स्वामी जी का विचार था,
1: आनंद में हमारा जन्म हुआ था, आनंद में हम निवास करते हैं और आनंद में हम लौट जाएंगे। हमारा जन्म पाप से नहीं, आनंद से हुआ है। आनंद हमें कहीं से प्राप्त या अर्जित नहीं करना है, बल्कि वो हमारा स्वभाव है। तत् त्वम असि, तुम वही हो। दुखों के बीच में, आपदाओं के बीच में भी यही सत्य है। उस अवस्था में भी मुझे कहना होगा, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरा ये स्वरूप किसी पर निर्भर नहीं करता और न ही मेरे स्वरूप पर कुछ निर्भर करता है। ये एक ही समय में एक भयंकर और सुंदर सत्य है।
2: स्वामी जी के कुछ और भी विचार खासकर दूसरे धर्मों के बारे में क्या थे, क्रिस्टीन ने बताया।
1: पूर्णता या दिव्यता मनुष्य का अब भी सच्चा स्वरूप है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सत्य की केवल अनुभूति कर लेनी है। स्वयं को अपूर्ण, सीमाबद्ध, असहाय समझना एक भ्रांति मात्र है। हम पूर्ण, सर्वशक्तिमान तथा दिव्य हैं। हम अब भी वही हैं, इसका अनुभव करो और तुम तत्काल मुक्त हो जाओगे।
3: हमारा विश्वास था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और एक अवतार है। स्वामी जी ने उसी की पूजा और आराधना की, परंतु इकलौते अवतार के रूप में नहीं। उनका मानना था कि अन्य युगों में, अन्य स्थानों पर, अन्य लोगों पर भी ईश्वर ने कृपा की है।
4: उन्होंने जरथुस्त्र के बचे हुए अनुयायी पारसी लोगों की कथा बताई। जब 1000 वर्ष पूर्व मुसलमान कबीलों ने ईरान पर आक्रमण किया था, तो उन लोगों ने वहां से भागकर भारत में शरण लेकर जान बचाई। अग्निपूजकों की ये संतानें अब भी भारत में अपने प्राचीन रीति रिवाजों के प्रति निष्ठावान है और अपनी भूमि में अबाध स्वाधीनता के साथ उनका पालन कर रही है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यद्यपि यह एक छोटा सा समुदाय है, तथापि इन लोगों ने अपने लिए एक सम्मानित स्थान बना लिया है और महान व्यक्ति पैदा किए।
5: उन्होंने हमें बताया, क्रूसबिद्ध होने के करीब 50 वर्ष बाद ही उनके शिष्य टॉमस द्वारा भारत में ईसाई धर्म लाया गया। भारत में कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ और प्रारंभिक ईसाई धर्मांतरितों के वंशज आज भी दक्षिणी भारत में निवास करते हैं। जब यूरोप बर्बरता की अवस्था में था, तब भी भारत में विशुद्धतम ईसाई धर्म प्रचलित था। इस समय उनकी संख्या मुश्किल से 10 लाख हो, जबकि पहले कभी उनकी संख्या इसकी 3 गुनी थी।
0: विदेशी भक्तों को गीता का ज्ञान स्वामी जी से ही मिला। भगनी क्रिस्टीन कहती हैं,
1: वे जिसके साथ रहते थे वो बड़े क्रोधी स्वभाव का था। किसी ने पूछा, आप उनके साथ क्यों रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आहा, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, वही तो मुझे आत्म संयम का अभ्यास करने का अवसर देता है। किसी भी कीमत पर अपनी सुख सुविधा चाहने वाले हम पाश्चात्य लोगों के लिए ये एक नई बात थी। इस प्रकार हमने प्रतिदिन और प्रति घंटे गीता के महान आदर्शों को दैनंदिन जीवन में क्रियान्वित होते देखा। मित्र के समान ही शत्रु में भी, प्रशंसक के समान ही निंदक में भी अपनी आत्मा को ही देखना और सम्मान या अपमान दोनों में अविचलित रहना, यही उनकी सतत साधना थी।
2: स्वामी जी इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी शांत ही रहे, नाम का मोह उन्हें नहीं था।
1: इतनी अल्प आयु में एक ही दिन या मिनटों में प्रसिद्धि पा लेना बड़ी ही दुर्लभ घटना है, पर धर्म महासभा में स्वामी जी के साथ ऐसा ही हुआ था। इस भावुक उन्मुक्त लोकप्रियता के बीच भी वे इतने शांत बने रहे मानो हिमालय के किसी गुफा में एकाकी निवास कर रहे हों। जिस तरह की उपलब्धि के लिए आगे आजीवन संघर्ष करते हैं, उसे उन्होंने नाम यश के गंदे चीथड़े कहकर दरकिनार कर दिया था।

0: स्वामी जी केवल प्राचीन विश्व इतिहास के ज्ञाता ही नहीं थे, वे वर्तमान में जो कुछ घट रहा है उससे काफी परिचित थे और उसी पर वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगा लेते थे।
1: कभी कभी वे एक भविष्य दृष्टा ऋषि के भाव में होते। एक दिन ऐसे ही भाव में उन्होंने ये कहकर हम सब को अचंभे में डाल दिया कि एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाला आगामी आंदोलन या तो रूस से आएगा या चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा। ये बात उन्होंने 32 साल पहले तब कही थी जब चीन मंचू शासकों के तानाशाही शासन के अधीन था और शताब्दियों तक उसकी उससे छूटने की कोई संभावना न थी। और जब जार शासित रूस अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को श्रमिक बनाकर साइबेरिया के खदानों में भेज रहा था, एक सामान्य विचारक के लिए तो विश्व में एक नए युग का सूत्रपात करने में उन दोनों देशों की कोई भूमिका अकल्पनीय थी। पर यह सच निकला।
2: उनकी सभी भविष्यवाणी सही साबित हुई। चीन का विश्व शक्ति बनना, विश्व युद्ध की विभीषिका, रूस का आंदोलन, ये सब उन्होंने अपने जीवन काल में ही कह दिया था। सामाजिक परिवर्तन तो हमारे सामने ही घटित हो रहा है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: तो अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम, अब ये सभा यही समाप्त होती है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की। तो आइए पहले हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार का सरोदवादन।

0: और श्रोताओं, डॉक्टर चंद्रिमा मजूमदार के सरोद वादन को सुनने के बाद अब बारी है पंडित श्रीनिवास जोशी के गायन की।
1: तीन तल में बंदिश, सब सखिया जाओ प्रभु के दर्शन।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित श्रीनिवास जोशी का गायन। आज का कार्यक्रम भारत भारती यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: ओफ, क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ, पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्नि देव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है। एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए, अरे सुनिए तो टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंडे ना।
3: अच्छा बनाती हूँ अभी।
5: हाँ हाँ, तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी, पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता, देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी, तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब, रो मत, रो नको, मालूम है मेरे को, सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना, तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या करूँ, सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस, अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना, मैं ही जाती हूँ।
5: रो,
3: हो गई ना तेरी चाय, अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ,

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
0: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
2: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
0: क्या?
2: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
0: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
2: हाँ बोलो।
0: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
0: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहनत आप तो बहुत समझदार हो गई है। मैं अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
0: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
2: बिल्कुल।
0: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
2: हाँ, हाँ।
0: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
0: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
2: वाह वाह, संकट
0: सोलर
2: मोचक।
0: कुकर देव की जय।
2: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
0: माफ करना जी,
2: क्या
0: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
2: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ये भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
0: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
2: क्या करूं?
0: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
2: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
0: हटो जी,
2: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तो उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी।
0: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
2: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
0: सच लाओ,
2: जल्दी जाओ। हाँ,
0: ये लीजिए।
2: हाँ,
0: ये हाँ। बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
2: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
0: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
2: ओफ, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
0: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
2: हाँ, मतलब हम दिनेश।
3: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
0: सुन सुनो जी, एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
2: उससे क्या होगा? क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
0: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
2: क्या मतलब?
0: मतलब ये, देखो अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
2: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
2: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: है?
2: जान ही दे देते हैं ना बाप अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
2: क्या,
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
2: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
2: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, है? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
2: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
2: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
2: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
2: क्या?
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
2: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी, जी।
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। छठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर छठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांसू है। चल जाए तो सुपर हिट, कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैया? तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या? अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी छठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभाल के,
0: अब जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हो यो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: ओ, यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
3: चिंता ना करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी?
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी
0: जी।
3: गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आंच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे दो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ। है?
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए।
3: अच्छा,
0: एक
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं।
0: हाँ।
3: पर हम इन्हें करते क्यों नहीं हैं?
0: हाँ, लेकिन अब करना है धर्म पत्नी।
3: हाँ,
0: जी
3: जरूर, जरूर।
0: नहीं तो पता चला अभी दूध आधा हुआ है।
3: हाँ।
0: और चाय आधी हुई है, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: हाँ, आगे चलकर कौन भरोसा कि रोटी भी आधी हो जाए?
3: नहीं नहीं।
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े, संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे, पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की
3: इजाजत नहीं मिलेगी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन, और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्ना ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तान, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: मुझसे प्यार है।
1: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
0: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
1: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
0: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
1: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
0: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
1: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डालेंगे।
0: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
1: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
0: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
1: हाँ?
0: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
1: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
0: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
1: क्या?
0: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीव पीव करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
1: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
0: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
0: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
1: क्या?
0: उनका बीपी है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: अरे,
0: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
1: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था और अब यकायक ये।
0: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर, आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। और आप कहती हैं कि
0: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
1: कैसे?
0: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
1: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
0: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
1: एसएमएस?
0: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
1: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
0: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है?
1: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़े ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
0: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
1: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
0: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
1: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
0: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
1: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
1: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो। बापरे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
0: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठ कर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
0: बाय
3: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: यार, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें बिना चाय चीजें ना जाने कहाँ का रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय।
2: ऋतु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी ऋतु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। यह आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बे टिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे वह, इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू, भाई सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
1: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
1: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
1: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
1: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
1: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
1: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
1: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
1: हाँ, वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ।
4: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
1: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
1: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
1: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
1: बता यार।
6: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: इह ब्रवीतु य ईमंग देवास्य वामस्य निहितं पदं वेह, शीर्ष्णः क्षीरं दुह्रते गावो अस्य वव्रिम वसाना उदकम पदापुहु। जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की किरणें पानी का दोहन करती हैं, वे ही तेजस्वी होकर पैरों से जल को सोखती हैं। माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सम ही जग में, सा भीमत्सुर गर्भरसा निविद्धा नमस्वंत इदु पवाकमीयुः। माता पृथ्वी ने ऋत यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्य का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्भ रस से निबद्ध हुई, तब उनमें नमन पूर्वक वचनों का आदान प्रदान हुआ। युक्ता माता सीधुरी दक्षिणाया अतिष्ठद गर्भो व्रजनी श्वंतः अमी मेद्वत्सो अनु गाम पश्यद्वी स्वरूप्यम त्रिषु योजनेषु। समर्थ सूर्यदेव की धारण क्षमता पर माता पृथ्वी आधारित है। गर्भ गमनशील के बीच रहता है। बछड़ा बादल गौवों किरणों को देखकर शब्द करते हुए अनुमान करता है, तब तीनों का संयोग विश्व को रूपवान बनाता है। तिस्रो मात्र स्त्री पित्रीन बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम विश्वमिन्वाम। यह सृष्टा प्रजापति अकेले ही तीन माताओं तथा तीन पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित हैं। इन्हें थकावट नहीं आती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे रहने वाले प्रजापति की वाणी के संबंध में द्युलोक के पृष्ठ भाग पर विचार करते हैं। द्वादशारम नहि तज्जराय वरवर्ति चक्रम परि द्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः। ऋत सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ का 12 अरों राशियों वाला चक्र इस द्युलोक में चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता। हे अग्निदेव, संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र अर्थात अरे यहां रहते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताने आए एक सैन्य अधिकारी को सूचना मिलती है कि दुश्मन देश घुसपैठ कर रहा है और युद्ध के आसार हैं। वो अधिकारी लौटने की तैयारी करता है। चिंता से भरकर जब उसका दोस्त उसे सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहता है तो वो जवाब देता है, तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और कुछ महीनों बाद वो तिरंगे में लिपट कर ही वापस आता है। वो साल था सन 1999। वो लड़ाई थी कारगिल युद्ध और वो अमर बलिदानी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमल बत्रा एक अध्यापिका। बत्रा परिवार में सीमा और नूतन दो बच्चियों के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उनका नाम रखा लव और कुश। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी उनके भाई विशाल बत्रा। विक्रम बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। इसके साथ ही कराटे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। विक्रम बत्रा की आरंभिक शिक्षा पालमपुर के डीएवी स्कूल में हुई। फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। अपने आसपास बचपन से ही उन्होंने वर्दी पहने हुए सैन्य अधिकारियों को ही देखा था और ये वर्दी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। इस तरह उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। पिता बचपन से ही उन्हें छत्रपति शिवाजी, शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम और बलिदान की भावना भर दी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो एनसीसी में शामिल हो गए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम बत्रा के लिए भविष्य के अनेक दरवाजे खुले थे, लेकिन उनका अपना चुनाव था कि उन्हें भारतीय थल सेना में ही शामिल होना है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी में जाने का अवसर भी उनके सामने आया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस नौकरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ।

स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए करने की योजना बनाई, ताकि चंडीगढ़ में ही रहते हुए सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस परीक्षा में वो सफल हुए। 21 साल उन्होंने एक सपना देखा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से 1.5 साल का प्रशिक्षण लिया, तब उनके कंधों पर 2 स्टार लगे। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। सोपोर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहां कई आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। अपनी वीरता, पराक्रम और जोश के कारण वो अपने साथियों और अधिकारियों के प्रेम पात्र बन गए। अत्यंत हंसमुख और जीवंत विक्रम बत्रा के मन में हर किसी के लिए असीम प्रेम था। उनकी अनेक डायरियां हैं जिनमें जगह जगह लव ऑलवेज लिखा मिलता है। दूसरों की सहायता और देश का सम्मान उनके संस्कारों में था। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना, यही उनका व्यवहार था जो जीवन में भी दिखाई दिया और युद्ध के मैदान में भी। सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। कारगिल की अनेक चोटियों पर दुश्मन ने अधिकार कर रखा था। सीमा पर भारतीय जवान भेजे जा रहे थे ताकि दुश्मन को खदेड़ा जा सके। कारगिल युद्ध के दौरान ही कैप्टन सौरभ कालिया और 5 जवानों को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया और असीम यातनाओं के बाद उनकी लाशें भारत भेजी। देश के साथ साथ विक्रम बत्रा भी इस घटना से अत्यंत उद्वेलित थे। अब तक 13 जैकरिफ एक रिजर्व फोर्स थी। ऑपरेशन विजय जारी था। तोरोलिंग और हम्प पर भारतीय जवानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने .5140 को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने रणनीति बनाते हुए 2 टीमें बनाई, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की ब्रावो कंपनी और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी। जब तक ये फौजी चढ़ाई चढ़ेंगे, तब तक तोपखाने से दुश्मन पर हमला होता रहेगा, और जब दोनों कंपनियां दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर होंगी, तब आर्टिलरी हमला बंद होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी। संपर्क रेडियो संदेश से बना रहेगा। पहचान छुपाने के लिए सभी के कोड नेम रखे गए। लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल का कोड नेम संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह रखा गया। .5140 जीतने के बाद जीत की सूचना देने के लिए विक्ट्री सिग्नल भी तय हुए। संजीव जामवाल ने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा ओ याया, और विक्रम बत्रा ने रखा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा का विक्ट्री सिग्नल देश भर में चर्चित हो गया था, क्योंकि इसमें भावना छिपी थी दुश्मन के और बंकर ध्वस्त करने की और चोटियां जीतने की। इस तरह .5140 के लिए विजय अभियान शुरू हुआ।

कारगिल युद्ध इतिहास के कठिनतम युद्धों में से एक था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था दुश्मन, जहां से वो भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख सकता था। इसलिए जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़कर सुबह होने से पहले दुश्मन के सभी बंकर ध्वस्त करने थे। सैनिक जब टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर थे, तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी गई और भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम बत्रा ने पीछे से हमला शुरू किया, दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी 2 ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म कर दिया। दोनों कंपनियां जैसे दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही गुत्थम गुत्था लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वो वाकई शेरशाह थे। दुर्गे माता की जय के बुलंद उद्घोष के साथ 0.5140 पर तिरंगा लहरा उठा। इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई। विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र के लिए उनका नाम भेजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके, वो इस कारगिल युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए रेस्ट पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला लक्ष्य था 0.4875, क्योंकि यहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे पर हमला कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधि को भी इस ऊंचाई से देख रहा था। 13 जैकरिफ अब 0.4875 के लगभग 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात थी। दुश्मन पर हमला शुरू हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा को बुखार था, पिछला घाव भी अभी भरा नहीं था, लेकिन वो टॉप पर जाकर युद्ध करना चाहते थे। 0.5140 के संघर्ष में शेरशाह विक्रम बत्रा से पाकिस्तानी फौज रेडियो संदेश पर बात कर चुकी थी, इसलिए उनके हौसले और पराक्रम को वो पहचानती थी। 0.4875 की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। इस चोटी के दोनों तरफ बड़े ढलान थे और दुश्मन की कठिन नाकेबंदी भी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे। भीषण गोलाबारी और फायरिंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वो लड़ाई भी लड़ते रहे और अपने साथी की जान भी बचाई। गोली और बमबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इसी बीच उन्हें गोली लग गई। उनकी डेल्टा कंपनी के जवान इसे सह नहीं सके। वो सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और दुश्मन के आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। 0.4875 पर तिरंगा लहरा उठा, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीरगति को प्राप्त हुए। तारीख थी 7 जुलाई 1999। जब तिरंगे में लिपटकर वो वापस आए तो पूरे देश का मन भीग गया। उनके सम्मान में 0.4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं विश्वेदेवा, वाक आप, धूम सोम, अग्नि सूर्य, वायु सरस्वती, साध्य पर्जन्य अग्नि और सरस्वान। छंद है त्रिष्टुप, जगति, प्रस्तार पंक्ति और अनुष्टुप।
1: इह ब्रवीतु य ईमंग देवास्य वामस्य निहितं पदं वेह, शीर्ष्णः क्षीरं दुह्रते गावो अस्य वव्रिम वसाना उदकम पदापुः। जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की किरणें पानी का दोहन करती हैं, वे ही तेजस्वी होकर पैरों से जल को सोखती हैं। माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सम ही जग में, सा भीमत्सुर गर्भरसा निविद्धा नमस्वंत इदु पवाकमीयुः। माता पृथ्वी ने ऋत यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्य का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्भ रस से निबद्ध हुई, तब उनमें नमन पूर्वक वचनों का आदान प्रदान हुआ। युक्ता माता सीधुरि दक्षिणाया अतिष्ठद गर्भो व्रजनीष्वन्तः अमी मेद्वत्सो अनु गाम पश्यद्वि स्वरूप्यम त्रिषु योजनेषु। समर्थ सूर्यदेव की धारण क्षमता पर माता पृथ्वी आधारित है। गर्भ गमनशील के बीच रहता है। बछड़ा बादल गौवों किरणों को देखकर शब्द करते हुए अनुमान करता है, तब तीनों का संयोग विश्व को रूपवान बनाता है। तिस्रो मातृ स्त्री पितृन बिभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचम विश्वमिन्वाम। यह सृष्टा प्रजापति अकेले ही तीन माताओं तथा तीन पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित हैं। इन्हें थकावट नहीं आती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे रहने वाले प्रजापति की वाणी के संबंध में द्युलोक के पृष्ठ भाग पर विचार करते हैं। द्वादशारम नहि तज्जराय वरवर्ति चक्रम परि द्यामृतस्य आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थुः। ऋत सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ का 12 अरों राशियों वाला चक्र इस द्युलोक में चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता। हे अग्निदेव, संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र अर्थात अरे यहां रहते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

और जितना घट उतना मतान बहु बाणी बहु बेख और सब घट व्यापक साइया अगम अपार अलेख। तो जो वह एक न जा

ईश्वर की पवित्र मंगलमयी कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है। ध्यान बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

ईश्वर के लिए एकांत में जो विलाप करता है उसे प्रभु किसी न किसी रूप में मिलते हैं। प्रभु से मिलने की वेदना होनी चाहिए।

परमात्मा को जो प्रसन्न कर सकता है वह संसार को भी प्रसन्न कर सकता है। प्रभु की कृपा होने पर संसार स्वयं अनुकूल हो जाता है।

इसी रचना के साथ आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

छुट्टियों में अपने परिवार के साथ समय बिताने आए एक सैन्य अधिकारी को सूचना मिलती है कि दुश्मन देश घुसपैठ कर रहा है और युद्ध के आसार हैं। वो अधिकारी लौटने की तैयारी करता है। चिंता से भरकर जब उसका दोस्त उसे सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहता है तो वो जवाब देता है, तू चिंता मत कर, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और कुछ महीनों बाद वो तिरंगे में लिपट कर ही वापस आता है। वो साल था सन 1999। वो लड़ाई थी कारगिल युद्ध, और वो अमर बलिदानी थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और माता कमल बत्रा एक अध्यापिका। बत्रा परिवार में सीमा और नूतन दो बच्चियों के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। माता पिता ने प्यार से उनका नाम रखा लव और कुश। लव यानी विक्रम बत्रा और कुश यानी उनके भाई विशाल बत्रा। विक्रम बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करते। इसके साथ ही कराटे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, स्क्वैश और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। विक्रम बत्रा की आरंभिक शिक्षा पालमपुर के डीएवी स्कूल में हुई। फिर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। अपने आसपास बचपन से ही उन्होंने वर्दी पहने हुए सैन्य अधिकारियों को ही देखा था, और ये वर्दी उन्हें बहुत आकर्षित करती थी। इस तरह उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया। पिता बचपन से ही उन्हें छत्रपति शिवाजी, शहीद भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर देश प्रेम और बलिदान की भावना भर दी। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्रवेश लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो एनसीसी में शामिल हो गए और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अर्हता प्राप्त की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विक्रम बत्रा के लिए भविष्य के अनेक दरवाजे खुले थे, लेकिन उनका अपना चुनाव था कि उन्हें भारतीय थल सेना में ही शामिल होना है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी में जाने का अवसर भी उनके सामने आया, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने इस नौकरी से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ।

स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इंग्लिश में एमए करने की योजना बनाई ताकि चंडीगढ़ में ही रहते हुए सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा की तैयारी कर सकें। इस परीक्षा में वो सफल हुए। 21 साल उन्होंने एक सपना देखा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए से 1.5 साल का प्रशिक्षण लिया, तब उनके कंधों पर 2 स्टार लगे। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में वो लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। सोपोर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। यहां कई आतंकवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई। अपनी वीरता, पराक्रम और जोश के कारण वो अपने साथियों और अधिकारियों के प्रेम पात्र बन गए। अत्यंत हंसमुख और जीवंत विक्रम बत्रा के मन में हर किसी के लिए असीम प्रेम था। उनकी अनेक डायरियां हैं जिनमें जगह जगह लव ऑलवेज लिखा मिलता है। दूसरों की सहायता और देश का सम्मान उनके संस्कारों में था। खुद से पहले दूसरों के लिए सोचना यह

विक्रम बत्रा भी इस घटना से अत्यंत उद्वेलित थे। अब तक 13 जैक रिफ एक रिजर्व फोर्स थी। ऑपरेशन विजय जारी था। तोलोलिंग और हम्प पर भारतीय जवानों ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने पॉइंट 5140 को जीतने की योजना बनाई। उन्होंने रणनीति बनाते हुए दो टीमें बनाई, लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल की ब्रावो कंपनी और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी। तय हुआ कि दोनों कंपनियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ेंगी। जब तक ये फौजी चढ़ाई चढ़ेंगे तब तक तोपखाने से दुश्मन पर हमला होता रहेगा, और जब दोनों कंपनियां दुश्मन से 200 मीटर की दूरी पर होंगी तब आर्टिलरी हमला बंद होगा और आमने सामने की लड़ाई होगी। संपर्क रेडियो संदेश से बना रहेगा। पहचान छुपाने के लिए सभी के कोड नेम रखे गए। लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल का कोड नेम संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह रखा गया। पॉइंट 5140 जीतने के बाद जीत की सूचना देने के लिए विक्ट्री सिग्नल भी तय हुए। संजीव जामवाल ने अपना विक्ट्री सिग्नल रखा ओ याया, और विक्रम बत्रा ने रखा ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा का विक्ट्री सिग्नल देश भर में चर्चित हो गया था, क्योंकि इसमें भावना छिपी थी दुश्मन के और बंकर ध्वस्त करने की और चोटियां जीतने की। इस तरह पॉइंट 5140 के लिए विजय अभियान शुरू हुआ।

कारगिल युद्ध इतिहास के कठिनतम युद्धों में से एक था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था दुश्मन, जहां से वो भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख सकता था। इसलिए जवानों को रात के अंधेरे में चढ़ाई चढ़कर सुबह होने से पहले दुश्मन के सभी बंकर ध्वस्त करने थे। सैनिक जब टारगेट से 200 मीटर की दूरी पर थे, तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी गई और भारतीय जवानों ने मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। विक्रम बत्रा ने पीछे से हमला शुरू किया, दुश्मनों के बंकरों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने दुश्मन के मशीन गन पोस्ट पर भी 2 ग्रेनेड फेंककर उसे खत्म कर दिया। दोनों कंपनियां जैसे दुश्मन पर टूट पड़ी थीं। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही गुत्थम गुत्था लड़ाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। वो वाकई शेरशाह थे। दुर्गे माता की जय के बुलंद उद्घोष के साथ .5140 पर तिरंगा लहरा उठा। इस जीत की खुशी पूरे देश में मनाई गई। विक्रम बत्रा को कैप्टन बनाया गया। उनकी बहादुरी को देखते हुए महावीर चक्र के लिए उनका नाम भेजा गया। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा यही नहीं रुके, वो इस कारगिल युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए रेस्ट पर जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। अगला लक्ष्य था .4875, क्योंकि यहां से दुश्मन सीधे नेशनल हाईवे पर हमला कर रहा था और भारतीय सेना की गतिविधि को भी इस ऊंचाई से देख रहा था। 13 जैकरिफ अब .4875 के लगभग 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात थी। दुश्मन पर हमला शुरू हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा को बुखार था, पिछला घाव भी अभी भरा नहीं था, लेकिन वो टॉप पर जाकर युद्ध करना चाहते थे। .5140 के संघर्ष में शेरशाह विक्रम बत्रा से पाकिस्तानी फौज रेडियो संदेश पर बात कर चुकी थी, इसलिए उनके हौसले और पराक्रम को वो पहचानती थी। .4875 की लड़ाई बहुत खतरनाक थी। इस चोटी के दोनों तरफ बड़े ढलान थे और दुश्मन की कठिन नाकेबंदी भी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहे थे। वो आगे बढ़ते रहे, भीषण गोलाबारी और फायरिंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। वो लड़ाई भी लड़ते रहे और अपने साथी की जान भी बचाई। गोली और बमबारी में गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। इसी बीच उन्हें गोली लग गई। उनकी डेल्टा कंपनी के जवान इसे सह नहीं सके। वो सभी एक साथ दौड़ते हुए आए और दुश्मन के आखिरी बंकर को भी ध्वस्त कर दिया। .4875 पर तिरंगा लहरा उठा, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। तारीख थी 7 जुलाई 1999। जब तिरंगे में लिपटकर वो वापस आए तो पूरे देश का मन भीग गया। उनके सम्मान में .4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: दोस्तों नमस्कार, प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए, आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
1: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
2: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
1: जी।
2: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्र गीत की, तो राष्ट्र गीत के वो जो दो छंद है वही अपने आप में काफी है पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो, इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
2: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है
1: जी।
2: हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर है।
1: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
2: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं, और वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था। क्योंकि वो सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास 1 मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके, वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वहीं आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते हैं तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है। अब लोग सजग हो गए।
1: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
2: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
1: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
1: जी।
2: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
1: जी।
2: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल यह है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण के उनके अधिकार है इंटर जनरेशनल इक्विटी का, इंटर जनरेशनल इक्विटी
1: जी।
2: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है और बच्चों की क्या माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं?
2: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाए, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत सरकार और राज्य सरकार की, लेकिन एक प्रश्न आपका बड़ा आवश्यक है कि क्या एक राज्य सरकार का एक जो नियम है वो क्या नियम सब पर प्रकृति के मामले में क्या सब जगह उसी तरह से प्रभावी होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो एक ही राज्य में ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं कि एकदम बदल जाती है
1: जी।
2: भोपाल की भौगोलिक स्थिति और रीवा की भौगोलिक स्थिति, ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति और डिंडोरी मंडला की भौगोलिक स्थिति सब बदल जाती है
1: जी। ने बोला कि सबकी स्थानीयता के हिसाब से कानून की बात कही, नीतियों की बात कही, ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
2: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेशा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीजों को देखकर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है, तो इस संबंध में भी कानून है। और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं। यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है, जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
1: जी।
2: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है, ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं। और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
1: भूमिका की बात तो हो गई, लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत जरूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
2: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीजें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है, और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं, आज की तारीख में बहुत सिंपल आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
1: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्व जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
2: एकदम सही बात,
1: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
2: और तो इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
1: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
2: एकदम सही।
1: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
2: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं, ये एक बेसिक चीजें हैं
1: जी।
2: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें, ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
2: एकदम।
1: अगर हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दाव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
2: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में, जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको, ये संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें,
1: जी
2: स्वयं लिखे और भेजे।
1: जी, पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
2: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया।
1: जी।
2: जंगल तो मैं बन चुका, लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है, कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है, लोग मुझे शंकरगढ़ के पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
1: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहां खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा ज़रूर सकती हैं।
2: जरूर।
1: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
2: आपका भी धन्यवाद और आभार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, समय की हथेली पर ठहरा कोई भी क्षण कभी स्थायी नहीं होता। भोर की पहली किरण संध्या में ढल जाती है, फूलों की मुस्कान भी एक दिन मुरझा जाती है, उपवन की रंगत नीरवता बन जाती है और जीवन देखते ही देखते स्मृतियों का एक शांत अध्याय बन जाता है। परिवर्तन इस सृष्टि का शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो दिखाई देता है वो भी एक दिन समय की धारा में विलीन हो जाएगा। किंतु इस नश्वरता के बीच एक सत्य ऐसा भी है जो कभी क्षीण नहीं होता, और वो है आत्मज्ञान का प्रकाश। भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्वितीय ग्रंथ योग वासिष्ठ में इसी सत्य का उद्घाटन हुआ है। इसमें बताया गया है कि संसार की क्षणभंगुरता भय का विषय नहीं बल्कि जागरण का निमंत्रण है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तभी वो मोह के बंधनों से ऊपर उठकर शांति, विवेक और आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। तो आइए योग संवाद में आज इसी क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता विषय पर चर्चा करें। हमारे बीच इस बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं इन दिनों योग संवाद कार्यक्रम में
2: जी,
1: और हम उस पृष्ठ पर हैं जहां क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर चर्चा है
2: जी।
1: तो मैं चाहती हूं कि हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि इस संसार के प्रति आकर्षित चित्त को कहीं भी विश्राम क्यों नहीं मिलता है।
2: इसलिए कि ये संसार क्षणभंगुर है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने गुरु से कि तात इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरी दृष्टि में चित्त को विश्राम प्रदान करे। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे खेल क्रीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, युवा अवस्था में मन विषयों की तरफ भागता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है उस समय सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होता है। राम जी कह रहे हैं कि ये प्राण भी छोड़ करके शरीर को दूर चला जाता है और मनुष्य इस संसार सरोवर में सिर्फ शुष्कता को प्राप्त होता है
1: जी।
2: उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती, कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो ये जो चित्त है, चित्त को ठहरने की स्थिति संसार में कहीं नहीं है
1: जी,
2: क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है वो क्षणभंगुर है, क्षण में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जब हम विषयों से आसक्त होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दीर्घकालिक हमारे चित्त को शांति देगा। हम अपने अनुभव में भी अगर ध्यान दें, थोड़ी सावधानी से देखें उसे
1: जी,
2: तो हमें ऐसा लगेगा कि हम जिन विषयों में बहुत सुख और शांति की कल्पना करते थे उनकी प्राप्ति के बाद हम सुखी और शांत नहीं हुए।
1: बिल्कुल।
2: तो ये राम जी चूंकि उस समय उत्कट वैराग्य उनको हुआ है विवेक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्षणिक मिलता है विश्राम, लेकिन आत्यंतिक विश्राम नहीं मिलता जहाँ आपको परम सुख की प्राप्ति हो सके।
1: जी जी
2: जी।
1: अच्छा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो संतोष है वो परम सुख है, उसे ही सबसे बड़ा धन भी कहा गया है
2: जी।
1: तो मनुष्य इससे वंचित क्यों होता, कौन है जो मनुष्य को संतोष से वंचित कर देता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। राम जी कहते हैं कि इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि तृष्णा जो है आपको किसी भी पदार्थ के साथ सुखी नहीं होने देगी। जैसे ही उस पदार्थ की प्राप्ति होगी फिर तृष्णा किसी और की होगी
1: जी।
2: तो ऐसे में तृष्णा रूपी नदी संसार में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं होने देगी। इसीलिए जो संतोष को परम सुख माना ऋषियों ने
1: जी,
2: वो इसलिए कहा। जबकि आज के समय में आप देखें तो संतोष की अवहेलना करने की बात की जाती है कि संतोष करने का मतलब हुआ कि आप तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे, विकास करना है तो आपको लगातार तृष्णा की नदी में छलांग लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी अवधारणा ही बड़ी अलग है। चूंकि ये वैराग्य प्रकरण है, वैराग्य प्रकरण से हम कह सकते हैं कि संसार के सत्य का अन्वेषण करते हैं या संसार के सत्य को देख पाते हैं। और जब संसार में कभी असफलता लोगों को प्राप्त होती है तो भी लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन वो वैराग्य एक प्रकार का पलायन उत्पन्न करता है, वो रोग का रूप ले लेता है। लेकिन ये विवेक से जो उत्पन्न जो वैराग्य है वो संसार में चित्त में जो राग और द्वेष रूपी जो प्रवृत्ति है उसको शांत करता है। तो विवेक का जो वैराग्य है वो स्वीकार्य है, लेकिन अज्ञानता में उत्पन्न वैराग्य मानसिक रोग का कारण बन सकता है।
1: अच्छा, एक बड़ी रोचक सी बात आपने कही कि एक उल्टी ही शिक्षा दी जा रही है कि अब छलांग लगाइए तृष्णा की नदी में। है
2: जी,
1: ये बात सही है कि खूब सपने देखें, खुली आंखों से सपने देखें, ये बात बहुत होती है इन दिनों।
2: जी जी,
1: तो जो मनुष्य है
2: हाँ,
1: वो जीवन में सपने देखना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
2: नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा गया।
1: दृष्टि कैसी हो?
2: दृष्टि ऐसी हो कि संतोष हो। कहते हैं कि ये जो तृष्णा रूपी नदी है इसको हम समझें कि हम तृष्णा के वशीभूत ना हो जाएं। वो कह रहे हैं कि तृष्णा रूपी नदी जो है ये संतोष रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है, यानी संतोष की जड़ को खोद देगी ये। और जब संतोष की जड़ खुद जाएगा तो फिर सुख से आप वंचित रहेंगे, क्योंकि सुख शास्त्रों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा के ऋषियों की दृष्टि में संतोष को परम सुख का कारण माना गया। संतोष में सुख होता है। योग में कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संतोष ही परम सुख है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। लेकिन यहां पर तृष्णा की नदी में तो संतोष होता ही नहीं है, क्योंकि ये नदी संतोष के वृक्ष के जड़ को खोद डालेगी। इसमें बड़ा सुंदर उन्होंने उदाहरण लिया, कहा कि संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से हिलती डुलती रहती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि शरीर में क्षुधा पिपासा ही उत्पन्न होती है जिसकी वजह से जीव हिलता डुलता है। और कहते हैं पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह है, इसको इंद्रियों से जो हम सुख लेने की बात करते हैं उस इंद्रियों को ग्राह की संज्ञा दी गई है, जिसने उस हाथी को या कह सकते हैं पकड़ रखा है। तो ग्राह है ये, लगातार इसे टक्कर मारकर डुबोने में लगा रहता है। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव ही बैठे रह सकते हैं और वो विवेकी ही अपने आप को संभाल सकते हैं। जहां तृष्णा रूपी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार के वन में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर वृक्षों की शाखाओं पर भटकते रहेंगे, मरकट की भांति कूदते रहेंगे इस डाल से उस डाल।
1: अच्छा, ये बताइए कि संसार में किस प्रकार के महात्मा दुर्लभ हैं?
2: इसके लिए श्री राम जी कहते हैं कि हे महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, ऐसे महात्मा इस समय अत्यंत दुर्लभ हैं। अब जरा देखिए, कह रहे हैं राम जी की दुख और मोह से जो अपने आप को हमेशा दूर रखता है। जब भी आपत्तियां आती हैं तो आप देखें तो व्यक्ति आपत्तियों से दुखी होता है, और आपत्तियों के आने का मूल कारण होता है मोह। क्योंकि मोह अगर ग्रस्त आप नहीं हैं तो आप आपत्ति का भी अनुभव नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है संसार में। आमतौर पर आपत्ति आने पर लोग दुखी होते हैं या फिर मोहग्रस्त होते हैं संसार के विषयों से, या फिर न भी विषयों से तो अपने कार्य जो नित्य कर्म है उसके प्रति भी कई बार व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और संपत्ति पर जिसको अहंकार शून्यता ना हो। आमतौर पर स्वास्थ्य और संपत्ति को लोग सोचते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ कोई उपलब्धि है, और अहंकार में आदमी सोचता ही है कि ये तो हमने नियमित जीवनचर्या अपना रखी है, इस नाते मैं स्वस्थ हूँ। सच ये नहीं है। सच ये है कि अगर यहाँ पर भी आप अहंकार शून्य हैं, यहाँ पर भी आपके अंदर उस कहते हैं परम सत्ता के प्रति समर्पण का भाव है, तो ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है इस समय खोज पाना। तो क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि अहंकार से युक्त भी लोग दिखाई देते हैं, महात्मा
1: एक तरह
2: लोग
1: से वो ये बता रहे हैं कि महात्मा को कैसा होना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्लभ हैं। महात्मा जो होगा वो अहंकार शून्य होगा, वो कभी भी किसी भी विषय से चाहे अपने त्याग और तपस्या को लेकर के भी अहंकार से ग्रसित नहीं होगा।
1: अच्छा, श्रीराम जो कुछ देख रहे हैं उसमें वो शूरवीर भी देख रहे हैं, तो किसे वो कह रहे हैं कि संसार में शूरवीर कौन है?
2: राम जी कहते हैं कि इस संसार में मैं शूरवीर उसे मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। यानी जो मन आपको विवेक वैराग्य से दूर ले जाएगा
1: जी,
2: यानी वो तृष्णा की नदी में आपको बहाना चाहेगा, संतोष रूपी वृक्ष की जड़ों को खोदना चाहेगा। फिर ऐसे में जो लोग विवेक और वैराग्य के द्वारा इसको लांग जाते हैं, यानी मन रूपी तरंगों के पार चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तरंगों के पार जाने का मतलब हुआ, ये संकेत समझें कि जहां जल शांत है वहां कोई उस लहर नहीं है, उसमें
1: कोई उथल पुथल,
2: उथल पुथल नहीं है, तो ऐसे लोग को मैं सूरवीर मानता हूं जो उस शांति को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में अशांत चित्त नहीं है, क्योंकि जब तरंगे उठेंगी
1: तो उनके हिसाब से सूरवीर वो है जिसका चित्त शांत हो,
2: चित्त शांत हो, बिल्कुल ठीक है,
1: वो वीर है।
2: अन्यथा तो संसार में कई बार आदमी अपने पुण्य को लेकर के बहुत आह्लादित होता है
1: जी,
2: कई बार अपने पाप को लेकर बहुत भयभीत होता है, तो ऐसे में इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं, करणीय और अकरणीय के भेद में वो भेद बुद्धि से उलझा हुआ है। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे लोग सूरवीर नहीं है, सूरवीर वो है जहां तरंगे शांत हो गई हो और चित्त बिल्कुल शांत हो, यानी मन रूपी उत्ताल तरंगों को जो पार कर गए हों, और वो पार आप कर सकते हैं विवेक और वैराग्य से, राग और बुद्धि से पार नहीं किया जा सकता।
1: अच्छा, संसार धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी की कामना सभी को है
2: जी,
1: तो क्या

0: बैठे हुए हैं, तो उनके चित्त में कोई उद्वेग नहीं है, तो लक्ष्मी जी उनके प्रति आकर्षित होती हैं और जाकर के वरमाला उनके गले में डाल देती हैं। तो ऐसे में विष्णु जी का जो चरित्र है वो क्षमा, विनय, शांत, उदारता का है। तो लक्ष्मी इसी सात्विक बल से परिपूर्णता प्रदान करती हैं। अच्छा। अन्यथा लक्ष्मी को प्राप्त करके कभी कोई संतोष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, यानी लक्ष्मी जब अकेले होती हैं तो व्यक्ति को उल्लू बना देती हैं वो, और वो जब विष्णु के साथ होती हैं तो गरुड़ की सवारी करती हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि लक्ष्मी सेवा करती विष्णु की नजर आती हैं, बाकी सब लोग लक्ष्मी की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये एक इसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रतीक बताया गया है कि सात्विक बल ही है जो लक्ष्मी को प्राप्त करके परिपूर्णता की अनुभूति कराता है। अगर ये बल आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी असंतोष और बेचैनी का कारण बनेगी।
1: तो बहुत रोचक सी बात है कि लक्ष्मी की कामना हो लेकिन मन फिर कैसा हो, विष्णु जी
0: सात्विक बल के साथ हो।
1: जी जी।
0: आप राजसी होकर के लक्ष्मी के साथ स्थिर नहीं हो सकते।
1: योग वासिष्ठ में मुझे नजर आ रहा था कि संपत्ति और विपत्ति के जो कारण हैं कुछ बताए गए हैं। मैं चाहती हूँ हमारे सुनने वालों को आप बता दें कि जीवन में संपत्ति और विपत्ति क्यों आते हैं, क्या कारण है इसका।
0: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। व्यक्ति विपत्ति को हटाना चाहता है, संपत्ति को पाना चाहता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है, राम जी ये कह रहे हैं कि ये किसी के चाहने से नहीं होता। आप चाहें कि आपके जीवन में दुख ना आए तो ये आपके चाहने से नहीं होगा, बल्कि कई बार तो हम नहीं चाहने की वजह से उन चीजों को आकर्षित करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जिन चीजों को आप नहीं चाहते हैं बार बार उसे याद करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति जो है वो प्रारब्ध कर्म से आती है। प्रारब्ध कर्म आपके पूर्व का कर्म है जिसकी वजह से जीव देह धारण करता है, और जब देह धारण करता है तो देह के भोग भी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ये दोनों उसे मिलते हैं। प्रारब्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रारब्ध धनुष से छूटा हुआ तीर है जो निकल पड़ा है और उसे भोग करके ही समाप्त किया जा सकता है। कोई चाहे कि प्रारब्ध से अपने आप को हम बचा लें, और बचाने के लिए अगर प्रयास करके बचा भी ले तो भी उसे फिर उसको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोग उसका है। इसीलिए ये मानव जो तन है या मानव योनि है, इसके बारे में ये कहा गया कि ये ऐसी योनि है कि आप अपने विवेक और वैराग्य को जागृत करके अपने क्रियमाण, जो कर्म आप कर रहे हैं और जो उस कर्म का फल संचित हो रहा है, इन दोनों को आप रोक सकते हैं और प्रारब्ध को भोग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, भगवान को भी प्रारब्ध भोगने पड़े हैं, और भगवान के अवतारों की कथा देखें तो वो प्रारब्धवश पूर्व के कर्म का वो परिणाम ही तो भोगने आते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन वो भी किसके लिए, प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध कर्म का वो हेतु बनता है।
1: जी। अच्छा, असावधान मनुष्य की बुद्धि जो होती है वो संसार को किस तरह से देखती, कैसा दिखता है उसको संसार।
0: असावधान मनुष्यों की बुद्धि में यह संसार चिरस्थायिता की प्रतीति कराता है। तो जब इस संसार में हम किसी चीज को स्थायी देखते हैं तो इससे ये समझ लें कि हमने सावधानी पूर्वक संसार को नहीं देखा
1: नहीं
0: है।
1: देखा,
0: अगर सावधानी पूर्वक देखें तो यहाँ पर सारी चीजें क्षण में नष्ट हो रही हैं। महात्मा बुद्ध ने जो क्षणभंगवाद उन्होंने बताया कि संसार में हर चीज क्षण में भंग हो रही है, उन्होंने सावधानी के साथ इस चीज को जाना। इसीलिए आप देखते होंगे कि बौद्धिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस उनकी एक मेडिटेशन टेक्निक है, कि आप इतने सजग रहें कि जहां पर आपको संसार के सत्य से कभी भी वंचित ना होना पड़े। यानी सत्य संसार का क्या है, क्षणभंगुरता, तो वो क्षणभंगुरता आपको निरंतर दिखाई दे, लिहाजा आप संसार में कभी भी राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे, आपका चित्त शांत होगा। क्योंकि जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो भी क्षण में मिट जाएगा, और जिसके प्रति आपको राग है वो भी, उसकी भी अवधि क्षण भर की है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बदल रहा है तो फिर यहाँ पर आपके चित्त में जो राग देशात्मक प्रवृत्ति है उसमें भी शांति आनी चाहिए, उसका भी त्याग होना चाहिए। ये तब होगा जब आप सावधान होकर के इस संसार को देखेंगे। तो संसार को सावधानी से देखने के बाद यहाँ संसार में स्थायित्व नहीं दिखता, और असावधानी पूर्वक जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं या संसार में जो भोगों में संलग्न हैं, उनको संसार में चिरस्थायिता की प्रतीति हो रही है।
1: अच्छा, इसमें मनुष्य को अपराधी और उपकार शून्य प्राणी कहा।
0: जी,
1: ऐसा क्यों कहा?
0: ऐसा इसलिए कहा कि अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण प्रेम की बात राम जी करते हैं
1: जी।
0: कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसा है, ये मतलब कहते हैं कि दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा वो मानता है अपने आप को। ऐसा विश्वास करने का कारण क्या है कि जब इस संसार में श्वास को देने वाला पेड़, कहते ना कि श्वास जगत में सबसे अधिक मूल्यवान है क्योंकि जीवन का संबंध श्वासों से है और उन श्वासों का प्रदाता वो वृक्ष है जो मनुष्य अपने भोग या अपनी आवश्यकता के लिए उसको भी काट देता है। तो कहते हैं ऐसा उपकार शून्य प्राणी इस संसार में सदा जीवित रहेगा, ये कैसे भरोसा करने की बात है जब वो पेड़ों के उपकार को भूल करके उसे भी काट दे रहा है, तो एक दिन वो भी इस संसार से नष्ट हो जाएगा।
1: तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की बात भी यहां आती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि चित्त को शांत स्थिर करने की बात थी, लगातार हम सुन रहे हैं लक्ष्मी के संदर्भ में आपने ये कहा कि जिसके चित्त में उद्वेलन न हो लक्ष्मी उस तरफ आकर्षित होती है। अशांत कौन रहता है?
0: अशांत रहता है विषयासक्त मनुष्य। आंतरिक अशांति के विघात के लिए ये जो विषय की आसक्ति है ये हमेशा तैयार रहती है। यानी आपके जीवन में अशांति का अनुभव तभी होता है जब किसी विषय के प्रति आपके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न हो जाए। और विषय क्या करते हैं, राग द्वेष आपके जो अनुभव हुए हैं उस विषय के साथ, उस अनुभव के आधार पर राग द्वेषात्मक वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। राम जी कहते हैं कि विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। विषय जो है विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है और दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक अशांति के विघात के लिए तैयार है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूर्ता ही प्राप्त होती है। विषयासक्त व्यक्ति तत्काल मूर्ता या मूर्छित हो जाएगा विषयों के प्रभाव में। तो जब मूर्छित होगा तो वो अपने चित्त की शांति को जान नहीं पाएगा
1: जी।
0: और राम जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिसमें दोष नहीं है, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव शरीर हैं जो क्षणभंगुर नहीं है, और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है, बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत हैं। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही हैं। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। सोचिए ब्रह्मलोक में जो मतलब निवासी हैं जिनकी आयु बहुत लंबी है, वो कहते हैं कि रुद्र और विष्णु के दृष्टि में वो क्षण है वो कल्प।
1: अच्छा, तो चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बात है वो यही है, तो इसकी अवधारणा को मैं चाहती हूँ आप स्पष्ट कर दें
0: जी। इसको ऐसे देखें कि ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं, इसलिए विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, जिसे चिर जीवन और क्षण जीवन की जो बुद्धि है ये दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य है। ये भी सत्य नहीं है राम जी कह रहे हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि चिरजीवी हैं ये, तो कहते हैं ये भी दृष्टा की बुद्धि में की कल्पना है। जो दृष्टा इस जगत को देख रहा है, जगत के दृश्यों को देख रहा है, इस कारण से वो दृष्टा है। तो कहते हैं कि उसकी बुद्धि की कल्पना के कारण ये चिरजीवन और क्षण जीवन की अवधारणा उत्पन्न हो रही है। जबकि ये कल्पना के कारण उत्पन्न हो रही है तो ये कल्पना असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर ही पहाड़ है, उसमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी ही पृथ्वी है, कास्ट के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेतों के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो ये भी एक दृष्टा की कल्पना है, इस नाते ये असत्य है। इसका भी कोई जो अवधारणा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राम जी के वैराग्य का प्रकरण है। राम जी ये कह रहे हैं कि उनके समय में भी ये बात रही होगी चिरजीवन और क्षण जीवन की, तो उन्होंने कहा ये भी मेरी दृष्टि में असत्य है क्योंकि ये दृष्टा की कल्पना मात्र है।
1: अच्छा, श्रेष्ठ पुरुषों के पद की इच्छा रखने वाले मनुष्य की गति पर भी उन्होंने चर्चा की है, तो क्या कहते हैं वो?
0: वो कहते हैं कि जैसे पशु किसी हरी भरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निःसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, पद का अर्थ स्थान, धन, वैभव आदि की जो कल्पना लोग करते हैं को हठात लेने की इच्छा रखने वाला पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है, क्योंकि वो चित्त के द्वारा मारा जा रहा है। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का पद चाहते हैं तो आपको उसमें राग हो गया है, उसके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है, तो ये आपके चित्त को गिरा देगा और गिरने के कारण निश्चित ही आप गर्त में गिरेंगे। जैसे पशु पक्षी हरी लताओं को खाने के लिए गिर पड़ते हैं पहाड़ों के खाई में, उसी प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के पद को पाने की चेष्टा में अपने चित्त को संसार के विषयों या उन श्रेष्ठ पुरुषों के पद प्रतिष्ठा में अपने को गिरा देता है, बजाय अपने स्वरूप को जानने, अपने विवेक को जागृत करने के।
1: जी जी, तो क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता पर भगवान श्री राम चर्चा कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं चाहती हूँ कि चलते चलते बहुत संक्षेप में आप इस पूरी चर्चा का जो सार है वो रख दें।
0: मैं इस चर्चा का सार यही कहूंगा कि इस संसार में सावधानी पूर्वक अगर हम व्यवहार करना सीखें और संसार को सावधानी पूर्वक देखें तो निश्चित ही इस संसार में जो तृष्णा की नदी बह रही है और जिसने संतोष रूपी धन को कह सकते हैं कि मतलब समाप्त कर रखा है और व्यक्ति ऐसे धन की प्राप्ति के पीछे लगातार भाग रहा है जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को बढ़ा रही है। क्योंकि लक्ष्मी को प्राप्त करके चित्त की परिपूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपके पास सात्विक बल हो। सात्विक बल में क्षमा, करुणा, प्रेम, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके पास अगर शक्ति आती है तो इस शक्ति से आप अपने आसपास के वातावरण को पोषित करें, क्योंकि सात्विक बल पोषण का काम करता है और ये बल विष्णु जी के पास है। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने के देवता हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं, तो ऐसे में पालन का जो दायित्व है वो विष्णु जी का है। तो जब पालन वाला बल आपके अंदर आएगा तो उस बल से आप लक्ष्मी के साथ परिपूर्णता की अनुभूति करेंगे, अन्यथा लक्ष्मी के पीछे भागते हुए तो सारे लोग दिखाई देंगे और कभी भी वो यात्रा पूरी नहीं होने वाली है, उसमें संतोष नहीं आना है, क्योंकि संतोष सुख की प्राप्ति सात्विक बल से ही हो सकती है।
1: बहुत अच्छी चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की क्षणभंगुर संसार और सत्पुरुषों की दुर्लभता के विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे बीच उपस्थित थे इस बातचीत के लिए योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें, तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन, ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं, कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: मैया की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: बोलो भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है, बड़ी मुश्किल से आजादी रे मिली। ये देश का युवा न के को संदेश है, इस मंच का माध्यम से एक छोटा सा गायक।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

गायन की शुरुआत उन्होंने की राग मेघ मल्हार से, और गायन पर्व का समापन हुआ मंजरी असनारे केलकर के गायन से।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए भारत भवन के अंतरंग सभागार में। यह है गायन डॉक्टर ऋषि मिश्र का।
1: आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं तो सुनाने का मन कर गया मुझे। मुखड़ा देखिएगा।

0: और ये है मंजरी असनारे केलकर का गायन।
1: मौसम बारिश का है तो मल्हार का एक प्रकार रामदासी मल्हार। रामदासी मल्हार कई तरह से गाया जाता है, ये पर्टिकुलर बंदिश जो है इसमें दोनों गंधारों का प्रयोग किया गया है। बदरा उमड़ घुमड़ कर आन सताए ताल झपताल, और उसकी द्रुत बंदिश है कितते आया वेरी, राग रामदासी मल्हार।

ये थी रेडियो रिपोर्ट भारत भवन में आयोजित 3 दिवसीय गायन पर्व के आखिरी दिन की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: भारत की वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। पति और पुत्र की मृत्यु के बाद जब वे मालवा की शासक बनी तो राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष खाली था और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उस पर उनके महामंत्री ने सैनिक विद्रोह करा दिया, लेकिन अहिल्याबाई बुद्धिमान भी थी और साहसी भी। उन्होंने विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। उसके बाद शुरू हुआ राज्य में सुधार का सिलसिला। उन्होंने न सिर्फ सेना का नए ढंग से गठन किया बल्कि नारी सेना को भी सुदृढ़ बनाया। भ्रष्ट अधिकारियों को हटाकर नए सभासद नियुक्त किए गए। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, जिनमें कलकत्ते से बनारस तक की पक्की सड़क भी शामिल थी। सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनाकर लुटेरों को नियंत्रित किया गया। इससे राज्य का व्यापार बढ़ा और खाली राजकोष भरने लगे। रानी अहिल्याबाई एक धर्मपरायण शासक थीं। उनके राज्यकाल में ही सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। मालवा के लोग आज भी अहिल्याबाई को याद करते हुए उनके गीत गाते हैं। राजबाड़ा और होलकर शासकों की छत्रियां आज भी अहिल्याबाई के यश और गौरव का गान कर रही हैं।
3: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ओए मेरे देश की धरती ओ सल्लो, ए क्या किताब में मुंह डाल के बैठा है? अरे काम कौन तेरा ताऊ करेगा हैं?
4: क्या कक्का, फिर कर दिया डिस्टर्ब। बड़े मुश्किल से आधी किताब पढ़े थे, अब फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
3: अबे चल ओए, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है हैं? अरे मूलमती, तेरे ताऊ ने पढ़ी है कभी कोई किताब हैं? अरे जरा दिखा तो, कौन सी पोथी बांच रहा, दिखा जरा, दिखा।
4: छोड़ो ना काका,
3: अरे दिखा तो हैं? वीरांगना अहिल्याबाई हैं? तो ये घोंट रहा था 2 हफ्ते से।
4: आओ काका,
3: चल चल सुना क्या पढ़ा, चल बता, चलो जा शुरू।
4: हम कहाँ पढ़े?
3: अरे
4: कहा तो आप डिस्टर्ब कर दिए, अब शुरू से शुरू करनी पड़ेगी।
5: अरे कक्का राम राम।
3: राम राम राम राम राम राम।
5: ओए सल्लू, कैसा है तू?
4: अरे मस्त, एकदम चकाचक।
3: अरे आजा राजू, आजा। अरे ये सल्लू कैसा होगा भैया, हमेशा की तरह आराम से है। खैर वो सब छोड़, ये बता कि इस बार इधर को कैसे?
5: अरे बस कक्का, छुट्टियों में जरा घर आया था।
3: हाँ।
5: कॉलेज शुरू हो गया ना, तो वापस इंदौर जा रहा हूँ। हाँ। अब देखो बस कब तक आती है कक्का।
3: अच्छा, तो इंदौर जा रहे हो हैं? फिर तो भैया बहुत सही टाइम पे आए हो तुम। अभी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई की तो बात चल रही थी।
5: देवी अहिल्याबाई?
3: हाँ।
5: अरे उनके नाम पे तो कक्का इंदौर में यूनिवर्सिटी भी है।
3: सवा सवा। अरे तुम मिले जानकार है। तो चलो भाई, जरा हमारे सल्लू को कुछ बताओ उनके बारे में, बताओ।
5: अरे काका आप तो टांगे खींचने लगे, मुझे क्या मालूम उनके बारे में? अरे कुछ भी नहीं मालूम।
3: लो फिर भाई, ढाक के 3 पात। अरे ऐसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। अरे भाई इंदौर में राजबाड़ा गए हो कभी?
5: अरे वहाँ तो रोज अपना उठना बैठना है काका।
3: अरे भैया राजबाड़ा और उसके पास बनी छतरियाँ अहिल्याबाई होलकर के राजवंश की निशानी है।
5: ऐसा?
3: हाँ। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल डब्बा निकले यार। अब कौन पूरी करेगा अहिल्याबाई की कहानी?
5: अरे आप और कौन कर?
3: अरे मैं? अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, अरे ढेर सारा काम पड़ा है।
5: अरे, अरे
3: मैं नहीं, मैं नहीं।
5: कक्का सुनो तो, सुना दो जरा, मजा आ जाएगा।
3: अब तुम अब इतना जोर दे रहे हो तो सुनानी ही पड़ेगी। तो भैये कान लगा के सुनियो कहानी अहिल्याबाई की। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के मध्य में। माणकोजी शिंदे के एक गरीब मराठा परिवार में देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ।

0: लाखों में एक है हमारी अहिल्या, बिल्कुल राजकुमारी।
1: हाँ, पर राम जाने क्या होगा इस राजकुमारी का। अरे हम ठीक से इसका लालन पोषण तो कर नहीं पाते हैं, इसका ब्याह कैसे करेंगे।
0: तू चिंता मत कर, जैसे इतनी बड़ी हुई है वैसे ही एक दिन पराए घर भी चली जाएगी। ठाट से इसका ब्याह करूंगा एक राजकुमार से, देखना एक दिन महारानी बनकर रहेगी हमारी अहिल्या।
1: कब तक इन बातों से मन बहलाओगे। पूरे 12 बरस की हो गई है अहिल्या, समय आ गया है कि विवाह योग्य कोई वर देखो।
2: बाबा, मैं जल चढ़ाने शिव मंदिर जाऊं?
0: हाँ बिटिया जा, संभल के जाना, शिव जी ही इसकी नैया पार करेंगे।
3: हाँ, तो उस दिन शिव मंदिर के पास मालवा के राजा मल्हार राव होलकर सैनिक डेरा जमाए बैठे थे।

0: कितना मधुर कंठ है, मुख पर राजसी तेज है। मंत्री जी, कौन है यह दिव्य बालिका?
1: महाराज, प्रतीत होता है निकट ग्राम की ही कोई बालिका है। अभी पूछता हूँ। बालिके, बालिके।
2: प्रसाद।
0: चिरंजीवी भव। पुत्री, क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी, अहिल्या।
0: अति सुंदर।
2: क्षमा करें, विलंब हो रहा है, माँ प्रतीक्षा करती होगी।
0: महामंत्री, शीघ्र पता लगाएं, ये संस्कारी बालिका किस ग्राम की है, किस कुटुंब की है। हमने अहिल्या को हमारे पुत्र खंडू जी की वधु के रूप में चुना है। बालिका के माता पिता को शीघ्र न्योता भेजें।
1: ऐसा ही होगा महाराज।
3: बहुत बहुत बधाई हो।
4: बधाई हो, बधाई हो, महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है।
0: क्या, वाह, सारे राज्य में उत्सव की घोषणा करा दी जाए। सबको महाभोज के लिए आमंत्रण भेजो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
5: तो अहिल्या बाई के आने से महल में खुशियां गूंजने लगी। पुत्र भाले राव के बाद महारानी ने पुत्री मुक्ता बाई को भी जन्म दिया। सब कुछ खुशी मंगल से चल ही रहा था कि मालवा पड़ोसी राज्य से युद्ध में फंस गया।
6: क्या कहा काका, युद्ध में फंस गया?
5: हाँ बेटा सल्लू, युद्ध में फंस गया।
1: महाराज, सूचना मिली है कि आपके पुत्र राजा खंडू जी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए।
0: क्या? नहीं, पुत्री अहिल्या।
1: महाराज, स्वयं को संभालें। यदि हम कमजोर पड़े तो मालवा को हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी।
7: महाराज, मैंने निश्चय किया है, मैं राजा जी की चिता में सती बनूंगी।
0: नहीं अहिल्या, राज को तुम्हारी आवश्यकता है, हम तुम्हें सती होने की अनुमति नहीं देते। महामंत्री, राजसी तलवार निकाली जाए, सैनिकों को मोर्चे पर डटे रहने को कहो, सेना की बागडोर अब हम संभालेंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।

0: बताए फिर क्या हुआ सल्लू? कुछ समय बाद महाराज मल्हार राव की मृत्यु हो गई। अहिल्या बाई का पुत्र भाले राव भी बीमार रहने लगा। अरे बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, मगर वो भी काल का ग्रास बन गया। अब राज की पूरी जिम्मेदारी अहिल्या बाई के कंधों पर आ गई थी।
1: सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं। सावधान, मालवा शासिका महारानी अहिल्या बाई सभा में पधार रही हैं।
2: राजकोष खाली हो रहा है, राज्य के अधिकारी प्रजा के शोषण में लिप्त हैं। अब इन अव्यवस्थाओं पर लगाम लगानी ही होगी।
3: न्याय करे महारानी, न्याय करे।
2: क्या बात है, निर्भय होकर कहो।
3: महारानी, राज्य में व्यापार करना दूभर हुआ जा रहा है। अधिकारी मनमाने कर वसूलते हैं, लूट मची है लूट। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं हुआ महारानी, कभी नहीं हुआ।
2: गंगाधर जी।
4: जी महारानी।
2: शीघ्र पता लगाया जाए कि मसला क्या है, दोषी अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाए। तुम आश्वस्त रहो फरियादी, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
3: जय हो महारानी, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए महारानी। अरे ऐसा न्याय कबू नहीं देखा भैया, ऐसा न्याय कबू नहीं।
5: अरे पकड़ो उसको, अरे कहाँ भागा चला जा रहा है,
6: अरे कहाँ चला जा रहा है,
5: पकड़ो पकड़ो। बचने ना पाए,
6: अरे अंदर से घेर लो घेर लो।
5: दरबार में सीधे घुस गया, छोड़ना मत छोड़ना मत,
6: पकड़ लो।
2: क्या हो रहा है ये सब, छोड़ो उसे। कौन हो तुम?
5: महारानी जी, ये निचली जात का है, पता नहीं कैसे घुस गया यहाँ।
2: हमने प्रश्न आपसे नहीं पूछा था।
5: क्षमा करें।
7: महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो।
2: क्या नाम है तुम्हारा और इस तरह आने का कारण? अरे निर्भय होकर कहो।
7: महारानी जी, हम भकलू हैं महारानी जी, निचली जात के हैं, महेश्वर के पास नर्मदा जी के किनारे रहते हैं महारानी जी।
2: क्या समस्या है तुम्हारी?
7: महारानी जी, हमारी बस्ती में आपके सैनिकों ने हाहाकार मचा रखो है, लोग और लुगाइयों को पीटा थे, छोरों को मारा थे महारानी जी। हमारे पास देने के लाने कच्छू नहीं है, हमारो जी वो मुश्किल कर दो है, दरबारी आपसे मिलन नहीं देते। हम जाएं तो कहां जाएं महारानी जी, आपकी शरण में आए हैं।
2: गंगाधर जी।
8: जी महारानी जी।
2: ये सब क्या हो रहा है हमारे राज्य में, हमारी प्रजा को हमसे मिलने की अनुमति नहीं?
8: महारानी जी, आपका समय इन छोटी मोटी घटनाओं में उलझने के लिए नहीं है, फिर ये कोई बड़ी बात भी तो नहीं है?
2: हमारी प्रजा परेशान है और आप कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमसे मिलने के लिए किसी प्रकार की रोक टोक न लगाई जाए।
8: जी महारानी जी।
2: सेनापति जी।
9: जी महारानी जी।
2: ये कौन महेश्वर की बस्तियों में उपद्रव मचा रहा है?
9: महारानी जी, गंगाधर जी ने कुछ सैनिकों को वहाँ कर वसूलने के लिए भेजा है।
2: क्या, हमारी अनुमति के बिना ही भेज दिया? तुरंत सेना वापस बुला ली जाए, छोटों को सताने वालों को हमारे कोप का भाजन बनना ही होगा, और निर्बलों को सताने से बड़ा और कोई पाप नहीं। तुम निश्चिंत रहो भकलू, हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे।
10: देवी अहिल्या बाई का न्याय।
11: हमारे जय हो।
10: महारानी की
11: जय हो।
10: महारानी की जय हो।

0: महारानी जी, यदि बात ना जचे तो क्षमा करें, लेकिन प्रजा एक स्त्री प्रशासक के प्रति हमेशा आशंकित रहती है, और फिर शत्रु भी तो हमें कमजोर समझ के मौके का लाभ उठा सकते हैं।
1: गंगाधर, क्या कह रहे हैं आप?
0: महारानी, मेरा आशय आपके सामर्थ्य पर प्रश्न खड़ा करने का नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि भला हो यदि आप एक दत्तक पुत्र गोद ले लें और उसी की संरक्षिका के रूप में प्रशासन की देखरेख करें।
1: नहीं गंगाधर, अब हर मोर्चे पर हमें स्वयं आगे आना होगा। ये वक्त नहीं है कि किसी पर भी भरोसा किया जा सके।
0: आप कहती हैं तो ठीक ही होगा महारानी जी, मैं तो मालवा के भले की ही सोचता हूँ हमेशा।
1: मालवा का हित सोचने के लिए हम जीवित हैं गंगाधर। सभा समाप्त की जाती है।
2: महारानी जी, महारानी जी,
1: क्या हुआ? ये घबराहट कैसी है?
2: महारानी जी, गंगाधर ने एक सैनिक टुकड़ी के साथ विद्रोह कर दिया। महारानी जी,
1: तो हमारी आशंका सच ही निकली। सेना तैयार करो, गंगाधर को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे।

0: हाँ तो राजू, महारानी अहिल्याबाई ने गंगाधर के दांत खट्टे कर दिए। अरे इस घटना के बाद भी कई विद्रोह हुए, पर अहिल्याबाई विद्रोह दर विद्रोह कुचलते हुए आगे बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। अब मालवा की वाहवाही दूर दूर तक फैल रही थी। अरे सल्लू, ए तुझे नींद आ रही है क्या बे?
1: अरे नहीं काका, हम बड़े गौर से सुन रहे हैं काका।
0: अबे तू कम से कम काम पे ध्यान लगाता तो तेरी वाहवाही ढाबे तक तो रहती बे।
1: कैसी बात करता काका।
0: खैर चल सुन ध्यान से।
1: हाँ फिर आगे क्या हुआ काका?
0: हाँ तो मालवा को देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता था। मालवा को हड़पने की साजिश रचने वालों में एक और नाम था, राघोबा पेशवा। हाँ
2: महारानी जी, राघोबा पेशवा की सेना के सामने हम नहीं टिक सकेंगे। उनकी सेना संख्या में हमसे 3 गुनी है।
3: सेनापति तुको जी, आप आश्वस्त रहें, बस जैसा हम कहते हैं करते जाएं। राज्य की स्त्रियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जिसकी सीधी देखरेख स्वयं हम करेंगे।
2: जैसी आज्ञा महाराज।

0: पेशवा साहब, सुना है मालवा की स्त्रियां हमसे मुकाबले के लिए बर्छी और ढाल चलाना सीख रही हैं। महारानी अहिल्याबाई हमारी सेना के सामने स्त्रियों की सेना खड़ी कर रही हैं।
1: क्या अब हमें स्त्रियों से युद्ध करना होगा?
0: यह तो उपहास जनक है। भला स्त्रियों और हम में क्या मुकाबला? हम उनको रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर वो यही चाहते हैं तो यही सही।
1: नहीं नहीं सेनापति, नहीं। इस तरह से दोनों ही ओर से पराजय हमारी ही होगी। स्त्रियों को कुचलकर हम कौन सा यश पा जाएंगे? जनता हम पर थू थू करेगी। और मान लो कि हम पराजित हुए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।
0: पर पेशवा साहब, और कोई भी चारा नहीं है। आप ही बताएं, ऐसे में हम क्या करें?
1: सेना को पीछे हटने का आदेश दिया जाए।
0: पर पेशवा साहब, मालवा की गद्दी?
1: हमें अपना आत्मसम्मान खोकर गद्दी हासिल नहीं करनी। मोर्चा वापस लिया जाए।
0: जैसी आज्ञा पेशवा जी की।

0: अहिल्या बाई राजमहल में पधार रही हैं।
1: महारानी जी, बहुत से राजपूत हमारे विरुद्ध हो गए हैं, हमारी उपलब्धियों से जलकर हमें लुटेरा कह रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गए हैं।
2: क्या जिस महारानी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में धर्म की ध्वजा फहराई उनका राज्य लुटेरा है? महारानी अहिल्याबाई देवी हैं देवी। देवी अहिल्याबाई ने तो हमेशा जनता की भलाई सोची है, फिर चाहे वो कोई भी राज्य क्यों न हो। महारानी ने सर्वत्र सार्वजनिक निर्माण करवाए हैं, ये लोग महारानी की कृपा दृष्टि के योग्य नहीं।
3: शांत सेनापति शांत, सारे भारत की जनता एक है, द्वेष तो राजा और नवाबों में है। ये एक दूसरे की निंदा की आड़ में एक दूसरे के प्रदेश को बुरा बतलाते हैं। ये प्रदेश छोटा है वो बुरा है, हमारा प्रदेश बड़ा है और अच्छा है, वे जंगली हैं हम श्रेष्ठ हैं। अरे इस भेदभाव का विष हम सबको किसी दिन नरक में धकेलेगा। इस अराजकता की स्थिति में आपस में लड़ मरने से अच्छा होगा कि हम एकजुट होकर सौहार्द से रहें।
1: महारानी जी, इन षड्यंत्रों को लेकर हमारी क्या नीति होगी?
3: राज्यों के प्रति हमारी नीति मैत्रीपूर्ण होगी महामंत्री जी। युद्ध केवल जनधन की हानि देते हैं, आप सतही स्तर पर षड्यंत्रों को सुलझाने का प्रयत्न करें।
1: किंतु इस तरह शत्रु हमें दुर्बल समझने की भूल कर सकता है।
3: हमें लोगों के हृदय पर राज करना है महामंत्री, इसके लिए हम युद्ध की त्रासदी को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे, किंतु पानी ऊपर चढ़ने पर हम भी शत्रु को धूल चटा सकते हैं।
1: जी समझ गया।
4: अरे क्या बात है काका, मान गए काका। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
5: हाँ सल्लू, महारानी ने अब सेना को मजबूत करना शुरू किया और पता है नारी सेना बढ़ती चली गई। अब कोई मालवा के खिलाफ फन नहीं उठा सकता था। महारानी ने अब अपना सारा ध्यान मालवा के विकास में लगाना शुरू किया। हाँ
3: के लिए आवश्यक है कि दूसरे राज्यों से हमारा संपर्क बढ़े, राज्यों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए, प्रजा के सहयोग से हमारे कोषागार में पर्याप्त धन है, इसका प्रयोग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में किया जाएगा।

0: राहगीरों के लिए धर्मशालाएं प्याऊ बनवाए जाएं। और हाँ, अब कोई भी फरियादी किसी भी मसले को लेकर सीधे हम तक आ सकता है।
1: माना नहीं किया।

0: महारानी ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। अरे उनके ही शासन काल में कलकत्ते से लेकर बनारस तक पक्की सड़कें बनवाई गईं। अहिल्याबाई बहुत धार्मिक रहीं। उन्होंने स्वराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर बनवाया और बनारस में विश्वेश्वर मंदिर की स्थापना की थी।
1: वाह कक्का,
0: हाँ
1: महारानी तो बड़ी महान थी।
0: हाँ महान तो थी बेटा। अहिल्याबाई ने मालवा पर 30 सालों तक राज किया था।
1: 30 सालों तक?
0: हाँ, लेकिन 13 अगस्त 1795 को उन्होंने दुनिया से विदा लिया।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा, और स्वास्थ्य चर्चा में आज बात होगी जंक फूड पर। इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता आनंद जी। श्वेता जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: श्वेता जी, जंक फूड इस वक्त बहुत ज्यादा प्रचलन में है। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो कि जंक फूड किस श्रेणी में आया, इसकी क्या डेफिनेशन है, और फिर इसके प्रभाव पर बात करेंगे।
2: जंक फूड्स, ऐसे बोले डेफिनेशन में, ऐसे खाने जिसमें हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, ऑयल्स होते हैं। अब जंक फूड के अलावा आजकल एक शब्द और चला, जंक्स फूड। अच्छा। जंक्स फूड का आधार है या मतलब है कि जंक फूड, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत हाई मात्रा में शुगर, फैट, ऑयल्स होना। इसके अलावा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स मीन्स ऐसे फूड जिसमें हमने खूब सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए लेकिन साथ में एडिटिव फ्लेवर्स, कलर्स मिलाए। दे आर न्यूट्रिशनली वेरी डिप्राइव्ड। जो आज की बातों में हमें विटामिन, मिनरल्स, जो बहुत हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, इस जंक फूड्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कैफीन, टी, शुगर्स, एडेड जो भी हमारे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, इसे कार्बोनेटेड बोलते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, जो स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस होते हैं, ये सब जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। तो अब जंक फूड एक तरह से कहा जाए तो जंक फूड हो गया है।
1: जंक फूड की श्रेणी में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी भी आ गई है।
2: केवल ये शुगर, टी वाली जो चीजें, जो पेय के अलावा, इवन जो हम फ्रेश जूसेस समझते हैं, जो पैकेट में आते हैं, वो भी जंक फूड की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उसमें एडिटिव फ्लेवर्स डले हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रूट्स के जूसेस होते हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगे एज कम्पेयर टू ये प्रिजर्व्ड फूड ड्रिंक्स और जूसेस।
1: चूंकि आपने बताया कि प्रिजर्वेटिव उसमें होते हैं, शुगर एडेड होते हैं, तो ये भी जंक उसी श्रेणी में आ गए और नुकसान लगभग उतना ही करते हैं।
2: बिल्कुल। सडन राइज, कोई भी खाना जो सडन सुक्रोज देगा, फ्रक्टोज देगा, वो हमेशा शरीर के लिए हानिकारक रहेगा। तो जितने स्वीटेंड होते हैं इसमें हाई मात्रा में शुगर होती है, तो ये अभी जंक फूड के श्रेणी में आएंगे।
1: क्या जंक फूड की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है, और अगर होती है तो क्या?
2: न्यूट्रिटिव वैल्यूज में कैलोरीज बोले तो इट इज फुल ऑफ हाई कैलोरी डेंस फूड, बट यदि हम विटामिन्स, मिनरल्स बोले तो ऑलमोस्ट निल, दे डोंट हैव एनी विटामिन मिनरल्स। तो न्यूट्रिशनली ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और ये शरीर को हानि पहुंचाते हैं।
1: ऑलमोस्ट जंक फूड तो शायद हर इंसान खा रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए, और फिर ये चीज सोसाइटी में जिस तरह से फैली है बुराई, तो उसको कैसे बाहर आया जाए इससे?
2: देखिए, चीटिंग डे सबने सुना है, तो सर्विंग पर वीक हफ्ते का एक, शायद एक मील अलाउ कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ऑलवेज ऑलवेज वी शुड गो विथ होम बेस्ड फूड। और यदि हम बच्चों के लिए एनफोर्स करें नहीं तुम जंक फूड मत खाओ, तो पहले हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ही घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। बच्चों को यदि हमने आदत डाली है तो हमें काम रहना पड़ेगा, हम एनफोर्स नहीं कर सकते। स्लोली चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते, बट विद टाइम बेबी एडजस्ट होता है एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द होम फूड। बट सबसे पहले हमसे शुरुआत होगी, तो हमें भी हफ्ते का एक, यस, नेग्लिजिबल, वो भी उसमें हमें देखना चाहिए कि एनर्जी जो कंटेंट है, दैट शुड बी लेस देन 10%, द फैट कंटेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। तो आइडियली जंक फूड को हमारे से ना शुरुआत होगी, तब बच्चों को हम ना कर पाए। होम बेस्ड फूड बनना चाहिए, घर पे बनना है, पैक्ड फूड मना करना। इवन जितने आपके चिप्स पे होते हैं, ये पाम ऑयल में बनते हैं। पाम ऑयल सबसे घटिया क्वालिटी का ऑयल होता है, एज कम्पेयर टू यदि हम यूएसए के देखें, दे मेक द एवरी चिप्स इन सनफ्लावर ऑयल, और ये हमारे पाम ऑयल जो कई बार यूज होके रिफाइंड कुकिंग हो चुकी होती है शायद, तो ये हमें सबसे जरूरी है। हम लीफलेट्स देखेंगे तो दे आर मेड ऑफ पाम ऑयल, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल एंड विथ लो ग्रेड। एक आपने सुना होगा सैचुरेटेड फैट्स, आगे लॉन्ग टर्म में हार्ट डिजीजेस कराते हैं, और पाम ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जिसे सबसे कम मात्रा में करना चाहिए। यही सनफ्लावर देखेंगे, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जिसमें हार्ट डिजीज की चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयल्स चेंज करके खाना चाहिए। पर ये जितने जंक फूड्स हैं, इसकी जो ऑयल कंटेंट है, दे आर ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, सो वन शुड अवॉइड।
1: जंक फूड जो लोग खा रहे हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं अगर जंक फूड जो लोग खा रहे हैं उन्हें?
2: जैसे जंक फूड का मैंने बताया हाई कैलोरी डेंस, हाई एनर्जी है, तो जब बच्चा ज्यादा एनर्जी ड्रिंक फूड्स, एनर्जी खाना खाएगा, तो ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और यदि बच्चे में मोटापा होगा, आज की लाइफ में आप देख रहे हैं फिजिकल जो एक्टिविटी ऑलमोस्ट ना, सेडेंटरी लाइफ ज्यादा हो गई है, क्योंकि मोबाइल्स हो गए, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में ओबेसिटी की मात्रा बहुत बढ़ गई। ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी लॉन्ग टर्म में डायबिटीज कराना, हाइपरटेंशन कराना, हार्ट डिजीजेस कराना, ये नोन है। इन सबको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो आइडियली इसीलिए हाई कैलोरी डेंस फूड हटाना चाहिए। जो हम खाना खाते हैं ऑलमोस्ट उसमें मान के चलिए कि 10-15% प्रोटीन होना चाहिए, 10-15% फैट होना चाहिए, 55% आपका कैलोरी होना चाहिए यानी एनर्जी होनी चाहिए। तो यदि हम बहुत फैट फूड खाएंगे, जो ये जंक फूड्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये मोटापा कराएगा। मोटापा से लॉन्ग टर्म में अडल्ट डिजीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये बहुत कॉमन है। दूसरी और चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, स्वीटेंड ड्रिंक्स होते हैं। स्वीटेंड ड्रिंक्स डेफिनेटली डेंटल कैरीज यानी दांतों में नुकसान पहुँचाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रिजर्वेटिव्स हैं, यदि प्रिजर्वेटिव्स होंगे तो एलर्जीज कराएंगे। इसके साथ में कितना अनहाइजीनिक खाना हम कई बार खाते हैं, जैसे आपने बताया पिस्ता पास्ता, ये सब हम जब ठेलिया का ऐसे भी कोई जगह से खाएंगे तो हमें स्वाभाविक से दस्त, उल्टी, जीआई इन्फेक्शंस के भी रिस्क रहेंगे। तो ये जंक फूड्स के इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं कि आइडियली यदि हमें अडल्ट लाइफ अच्छी जीनी है तो शुरुआत से हमारी लाइफ में ऐसे इनकलकेट करना चाहिए जिसमें होम बेस्ड फूड खाएं।
1: ठीक है जी, जंक फूड के कुछ अल्टरनेटिव्स बता सकते हैं कि जंक फूड जो कि लोगों में बहुत आदत पड़ता है, अल्टरनेटिव फूड है कोई जंक फूड?
2: यस, यदि हमें जैसे घर पे है छोटा बच्चा है जो 2-3 साल का, तो उपमा है, इडली है, मैश्ड पोटैटोज है, खीर है, साबूदाने की खीर बना सकते हैं। यदि थोड़ा बच्चा बड़ा है तो वेजिटेबल्स। तो हमें घर के ही फूड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स को इनकलकेट करना चाहिए। यदि हम घर पे हलवा बना रहे हैं या हम थोड़ा हैवी फैट ले रहे हैं तो उसे मान के चलिए 10% होना चाहिए टोटल एनर्जी का, पर ये देना है। तो हमें घर के बने खाने जैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा ऑल्टरनेटिव है रादर देन।
1: आज का जो परिवेश रहन सहन है, माता पिता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि जिसके कारण शायद वो भी बहुत जंक फूड खा रहे हैं और इसीलिए उनके बच्चे भी खा रहे हैं।
2: बिल्कुल, दोनों वर्किंग पेरेंट्स रहने लग गए, मुश्किल होती है घर पे बनाए कौन। हाँ। तो ये एक रीजन है, लेकिन फिर भी हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए। तो हमें किसी तरह समय निकाल कर घर का बना खाने की हमें भी हैबिट और बच्चों में भी डालनी पड़ेगी।
1: जो हम घर का खाना खाते हैं उसमें दाल चावल रोटी सब्जी आती है, वो कितनी अच्छी है, कितनी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कंपेयर अगर जंक फूड से करें तो?
2: एक शब्द है कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड यानी कि एक ऐसा फूड जो रेनबो, आपने सुना होगा 7 रंग। तो हमारे खाने में कुछ रंग कैलोरीज के, कुछ रंग फैट, कुछ रंग प्रोटीन के, कुछ विटामिन मिनरल और सबसे ज़रूरी पानी। तो मैं जो आपको बोल रही थी कि बेस्ट ड्रिंक जो आज की दुनिया में प्योर क्लीन वाटर है।
1: ठीक है,
2: जितना पानी हम पिएंगे ये सब जो जूसेस छोड़कर, यदि फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ये पानी हमारे लिए पूरे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है। तो ये पानी ही सबसे अच्छा पेयजल है जो बेस्ट है, इन सब फूड्स को रिप्लेस करता है।
1: तो घर की बनी हुई पूरी है या हलवा है उसको कैसे देखें, क्या उसको जंक फूड की श्रेणी में रखें या नहीं रखें, या वो कैसी है बच्चों की?
2: बस फैट का ध्यान रखना है। घी हमारे लिए भी जरूरी है, घी इतनी मात्रा में रहे कि 10% रहे जैसा मैंने आपको बोला। तो देना है कम फैट में पर देना है।
1: जैसे आपने जिक्र करा था कि डायबिटीज कहा आपने, कैंसर का भी नाम लिया, तो क्या इस तरह की बीमारियां जो हैं वो जंक फूड के कारण होती हैं?
2: yes.
1: और वो बच्चों में भी होती हैं?
2: अभी रिसर्च ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अडल्ट्स में नोन रिजल्ट्स मिल गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स ने ब्रेस्ट कार्सिनोमा, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमास में एसोसिएशन। अभी बच्चों में स्टडीज नहीं आई, पर क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म में क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, जब हम लंबे समय वही प्रिजर्वेटिव खाएंगे तो हमें कैंसर के रिस्क ज्यादा है, बच्चों में अभी नहीं पाया गया।
1: बहुत कम उम्र के 12-13-14 साल के रेगुलर कॉफ़ी पीने लगे हैं या चाय पी रहे हैं या इस तरह के, तो उनका मसला था कि तो उसकी आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
2: जो बच्चे आजकल पढ़ाई में इतना ध्यान दे रहे हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट है, नींद भगाने के लिए वो चाहते हैं कि शायद मैं कॉफ़ी पी लूंगा, चाय पी लूंगा, मेरी नींद भाग जाएगी, ये बिल्कुल उल्टा होता है। क्योंकि हम फॉल एस्लिप होंगे क्योंकि हमारी निद्रा तो हमें ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस टी कैफीन ये सबसे हार्ट रेट में इफेक्ट करता है, रिदम डिस्टर्बेंसेस कराता है, इवन कुछ बच्चों में डिप्रेशन साइकोसिस भी कराता है। तो यदि हमें कभी ऐसा लग रहा है तो चाय कॉफ़ी से अच्छा हमारा पानी या फ्रेश जूसेस है। सो टी एंड कैफिनेटेड शुगर्स, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली इन एडोलेसेंट एज ग्रुप जो 13-14 साल के हैं, जहाँ हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है और कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी भावना है कि अरे मैं पी लूँगा तो मेरी नींद भागेगी, नींद नहीं भागेगी, 2-3 घंटे में आप फिर स्लीप होने लगोगे, तो नुकसानदेह ज़्यादा है। इससे बेहतर है कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूसेस और ड्रिंक्स करें, दैट इज़ प्योर क्लीन वाटर।
1: आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी, वो क्या हैबिट्स या किस तरह के तरीके अपनाएं जिससे जंक फूड से निजात मिले?
2: कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, जैसे सबसे पहले तो स्टे काम। बच्चा नहीं खा रहा तो ये नहीं कि आप एंग्री हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। कभी भी आप फोर्स फीडिंग नहीं करेंगे, नेवर ट्राई। धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज की आदत बदलने में समय लगेगा, तो ये ना सोचे कि आज ही किया और अगले दिन से नहीं। धीरे धीरे इंटरमिटेंटली हमें कम करना पड़ेगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमें हेल्दी फूड अराउंड रखना है, हमें वो जंक फूड घर पे रखना ही नहीं है, ताकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने आपको पता है, हमें रोल मॉडल बनना, बी अ रोल मॉडल। चिल्ड्रन हमें साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, वो साइलेंटली वही देख रहे हैं। तो यदि हम हेल्दी फूड लेंगे तो बच्चे भी ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। हमेशा एक हेल्दी फूड से स्टार्ट करिए, नहीं कि मल्टीपल एक साथ बॉम्बार्ड कर दे। ऑलवेज स्टार्ट विथ वन हेल्दी फूड एट वन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चीयरफुल वे में इंट्रोड्यूस किया जाए, एंजॉयमेंट के साथ में। हमेशा एक अपीयरेंस ऑफ टेस्ट जो, और दिखने में थोड़ी कलरफुल, अच्छे से उसको सुंदर बनाया जाए, ताकि वो बच्चे को लगे हाँ ये खाने में उसे इंटरेस्ट तो आए। तो हमें घर पे ही टेस्टी एंड अपीयरेंस टू बी मॉडिफाइड। इंटरमिटेंट स्नैकिंग, अरे बीच में दे रहे हैं, नहीं वो नहीं, अवॉइड करना है। 3 हेल्दी मील डाइट्स होने चाहिए, 2 टाइम के स्नैक्स होने चाहिए। ये एक बेसिक हम रूटीन खाने का रखना चाहिए। एंड ऑलवेज बच्चे को भी आप इन्वॉल्व करो खाना बनवाने में। यदि हमने उसको इन्वॉल्व कर लिया तो उसे लगा हाँ मैंने हेल्प की है, मैंने बनाया। तो शायद ये सब टर्स जब हम इनकलकेट करें हमारी लाइफ में, तो बच्चे शायद जंक फूड से दूर हो जाएंगे।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, जब बच्चा खुद बनाने जाएगा तो शायद समझ में आएगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल लेके वो पत्ता गोभी को काटते हैं तो कई बार उसमें कोई कीड़ा निकलता है, तो संभवतः वो खुद ही समझ पाएगा कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हम उस कीड़े को या सब्जी को अलग कर देते हैं।
2: बिल्कुल,
1: सामान्यतः बाजार में ऐसा ना होता हो। इस पर क्या कहेंगे?
2: इवन वॉशिंग ऑफ आपकी सब्जियां हो रही कि नहीं वो भी नहीं हमें पता है। इतनी बीमारियां जैसे कि एल्बेंडाजॉल, जो हम आजकल एक डेली वॉर्म के लिए एनुअल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है कि एंटी हेलमिंथिक, यानी बच्चों को जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, हम साल में हर बच्चों को स्कूल से टैबलेट्स मिलती हैं। क्योंकि ये हम मान के चलते हैं कि ये जो सब्जियां नहीं धुली हुई हों, अंदर कीड़े चले गए तो बच्चे को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बाहर का खाना कितना साफ होगा यू डोंट नो।
1: आइसक्रीम जंक फूड की श्रेणी में है या नहीं है? अगर है तो क्या उसके नुकसान है?
2: बिल्कुल, आइसक्रीम भी प्रिजर्वेटिव है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि वो एक तरह से जो भी प्रिजर्वेटिव है जंक फूड्स में आते हैं। आइसक्रीम आप देखेंगे तो सडन सुक्रोज या सडन फ्रक्टोज रिलीज करते हैं। जो भी खाना तुरंत सुक्रोज या फ्रक्टोज रिलीज करेगा वो हानिकारक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शब्द होता है जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले खाने वो बहुत अच्छा, और आइसक्रीम सिंपल कार्बोहाइड्रेट सडन ग्लूकोज रिलीज करती है, हमारे इंसुलिन को बॉम्बार्ड करती है और वो नुकसानदेह। इवन आइसक्रीम यदि हम घर पे बनाए विद फ्लेवरिंग एजेंट्स ना डालें, जैसे हमें लगता है वनीला फ्लेवर एसेंस डालते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, तो हम घर पे ही मतलब बना सके तो बिल्कुल खाना।
1: आपने जोर जो दिया वो घूम फिर के आ रहा है कि स्ट्रेस बर्ड्स होते हैं, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, ठंडा हो, ये सामान्यतः पसंद आते हैं और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के कारण ही आदमी जंक फूड की तरफ जाता है।
2: बिल्कुल,
1: उनके अल्टरनेटिव्स आपने कुछ बताए, हम चाहेंगे कि वो आप अल्टरनेटिव्स और विस्तार से बताएं कि लोगों को एक सीधा संदेश जाए

0: 9-10 महीने तक दूध कर रही है और
1: ठीक
0: खाना ही नहीं खिलाया, उन्हें लगता है दूध ही पूर्ति कर। ऐसे बच्चे फसी ईटर होते हैं। जब ये फसी ईटर होते हैं मतलब ये बच्चे खान, क्योंकि टेस्ट बड डेवलप नहीं हुए जो 6 माह में होने थे, तो ऐसे फसी ईटर्स वाले बच्चे जंक फूड की तरफ, माँ को लगता है लाओ ये तो खा लेगा। और क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ये एडिटिव फ्लेवर, ये एडिक्शन का काम करता है। एक बार बच्चे को लत लग गई तो उसको वो पैकेट पैकेट, वो पैकेट क्यों खा रहा है, क्योंकि वो एडिटिव ड्रग्स, जो एडिटिव उसमें डाली जाती है चीज़ें, वो एडिक्शन है। तो
1: अच्छा
0: हमें यदि शुरू के 6 माह में यदि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फूड ढंग से स्टार्ट किया जिसमें बच्चे के टेस्ट बड डेवलप हो गए, चाहे वो मीठा हो
1: जी
0: गया, नमकीन जैसा आपने बोला, ये हमें शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं आपको कुछ एक मतलब कुछ खान पान आप जो मेरे से पूछ रहे हैं,
1: जी
0: जैसे आपसे मैंने कुछ बताया था
1: जी
0: कि
1: जी
0: खिचड़ी हो गई, दलिया, सूजी खीर हो गई, मैश्ड पोटैटोज हो जाएंगे, बनाना, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उपमा हो गया, मैश्ड इडली हो गई, दही, ये सब हम यंग बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चा पूरा खाना उतनी जल्दी, या वो प्रेरित रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा खाना खाना है। हमने लेट इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग तो बच्चा मोर ऑफ अ जंक फूड की तरफ डाइवर्ट होता है। थोड़े और बच्चे बड़े हों तो रोटी, दाल, चावल, थाली का पूरा खाना, जैसे मैंने आपको 7 रंगों का बताया, वो हमें जुड़ना चाहिए।
1: अगर हम बात करें, अगर दो धड़ों में बात है, जैसा कि हमारा देश बटा हुआ है, एक अर्बन और रूरल में, गांव और शहरों में, तो जंक फूड का असर आप कहाँ ज़्यादा देखते हैं और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है। रूरल और अर्बन डिविजन्स थे, पर अब ओबेसिटी, जैसा मैंने आपको बताया, जंक फूड ओबेसिटी कराता है ना। रूरल का कम्युनिटी, जो बच्चे हैं वो भी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जंक फूड ने अपने पाँव रूरल एरिया में भी नहीं छोड़े हैं, वहाँ भी एनक्रोच कर लिया। तो आप फूड पैकेट्स कहीं पर भी देखोगे, जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं वहाँ भी अवेलेबल है। तो बच्चे तो वहीं हैं, टेस्ट बड्स भी वहीं हैं। तो यदि हमने वहाँ तक रूरल एरिया भी नहीं छूटा है जहाँ पे हम पैक्ड फूड्स हर जगह मिल रहे हैं, तो बच्चे वहां पर भी, हाँ, क्योंकि अर्बन पहले से स्ट्रीमलाइन है, यहाँ ऑनलाइन डिलीवरीज ज्यादा होती है, तो जंक फूड की मात्रा नो डाउट अर्बन में, पर ये नहीं है कि रूरल वाला वंचित है। आज वहां पर भी जंक फूड्स के इंसिडेंसेस खूब है। एक मैं और चीज हाईलाइट
1: जी
0: करना चाहूंगी, जैसे कुछ लोग को लगता है रेडी टू यूज फूड्स, लाइक जो कॉर्न मक्के के, उसके साथ कॉर्न सिरप डलता है,
1: अच्छा
0: कॉर्न सिरप जैसे ही डलता है तो वो एक तरह से सुक्रोज और फ्रक्टोज का काम करता है। ब्रेड, ब्रेड क्या होती है, ये भी एक तुरंत रिलीज करती है शुगर्स को,
1: अच्छा
0: और ब्रेड्स भी बिल्कुल हानिकारक है। ब्रेड्स मैदा से बनती है, जितनी मैदा वाली चीजें होंगी वो भी एक तरह से जंक फूड में श्रेणी में आती है। तो इसीलिए रोटी या जो हम गेहूं से बनाई चीजें होती है वो बेनिफिट रहती है।
1: हिंदुस्तानी जो बाहरी खाना था, मसलन जैसे हमने बात करी कचौरी, समोसे या चाट की, उनके ही नुकसान बताए जाते थे, तो लेकिन अब पैक्ड फूड उनके अगर कंपैरिजन करें इनका, तो वो क्या कंपैरिजन होगा?
0: वो भी जंक फूड में ही आएंगे, जो पैक्ड फूड्स है,
1: हाँ
0: मैंने आपको जंक्स फूड बताया, जंक्स में इतनी बड़ी कैडर हो गई है जो
1: हाँ
0: सडन रिलीज, देखिए समोसा मैदा का बना है, उसके अंदर भरा है आलू,
1: ठीक है
0: तो एक तरह से वो हानिकारक होगा। उसकी आप कैलोरी डेंसिटी देखोगे बहुत हाई है, और सडन वही मैदा से बना है, तो ये सारी चीज़ें जो सडन रिलीज करती है हमारे इंसुलिन लेवल्स को, वो कहीं ना कहीं जंक फूड्स में आते हैं, तो समोसा भी उसी कैडर में आता है।
1: तो मैडम, चलते चलते आप संदेश क्या देना चाहेंगी जंक फूड खाने वालों को?
0: जंक फूड्स खाने वालों का मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज, की होम मैसेज है, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं, दीर्घायु रहना चाहते हैं, तो घर का बना खाना खाएं, खूब सारा पानी पिएं, जूसेस पीना हो तो घर के फ्रेश जूसेस निकाल के, फ्रेश फ्रूट्स के निकाल के जूसेस पिएं। और बहुत लगता है नहीं कभी तो खाना है, तो हफ्ते का एक डे अलाउड है, वंस अ वीक सर्विंग।
1: तो डॉक्टर श्वेता आनंद हमारे साथ मौजूद थी और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतने विस्तार से, बड़े डेफिनेट शब्दों में मैडम ने अपनी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू, थैंक यू।
1: तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो सुनते रहिए FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: जीवन में कुछ ऐसे भी कालखंड आते हैं जब जीवन अबाध रूप से नीरसता के एक भयंकर स्रोत के रूप में बहता चला जाता है। खाना, सोना और बातें करना, इन्हीं का उबाऊ चक्र चलता रहता है। अति साधारण घिसे पिटे विचार और रोजमर्रा की जिंदगी। फिर कोई दुखद घटना घटती है और हमें झटका देकर क्षण भर के लिए स्तब्ध कर देती है, परंतु हम शांत नहीं रह सकते। दुख या सुख कोई भी हमारे जीवन के इस दोल चक्र को रोक नहीं पाता। जीवन निश्चित रूप से केवल इतना ही नहीं है, हम केवल इतने भर के लिए यहां नहीं हैं। बेचैनी होती है, हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: फिर एक दिन वो हो जाता है, वे अद्भुत चीजें जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जो हमारी जानलेवा नीरसता को दूर करके हमारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है और जो अंततः हमें एक सुदूर देश में ले जाकर भिन्न प्रथाओं वाले जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे अद्भुत अजनबी लोगों के बीच स्थापित कर देती है, जो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है तथा वे किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ से ही उनके प्रति एक विचित्र आत्मीयता का बोध करने लगते हैं और तब हमारी बेचैनी सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती है।
0: स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उस वक्त वहां संपन्नता तो थी, पर लोगों की आध्यात्मिक भूख को मिटाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उस विराट धर्म महासभा का आयोजन हुआ, जहां सभी देशों में से सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए, अपने अपने धर्मों के बारे में बताया, पर कोई भी वक्ता वहां के लोगों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया।
1: अंत में स्वामी जी बोले, भारत की वाणी और संदेश सुनाया, वेदांत की, उपनिषद की व्याख्या की। उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं की, बल्कि वहां के लोगों को बताया कि सार्थक जीवन जीना किसे कहते हैं। लोग चकित हो गए, अपार भीड़ उमड़ने लगी इस नवीन सन्यासी को सुनने के लिए। लोगों को लगा उन्हें वो पथ मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। भगिनी क्रिस्टीन उन्हीं में से एक थी। उनके कुछ संस्मरण आपने सुने हैं, अब आगे की सुनिए।
2: जून के प्रारंभ में 3-4 लोग सहस्त्र द्वीपोद्यान में उनके साथ एकत्र हुए और शिक्षा का कार्य अविलंब आरंभ हो गया। वे शनिवार 6 जुलाई 1895 को वहां आए थे। अब तक जो लोग वहां पहुंचे थे, स्वामी जी ने उनमें से कुछ को सोमवार को दीक्षा देने का निश्चय रखा था। रविवार को अपराह्न में उन्होंने हम लोगों से कहा, मैं तुम लोगों को अभी तक इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम दीक्षा के उपयुक्त हो या नहीं। इसके बाद उन्होंने थोड़े सलज्ज भाव से कहा, मुझ में एक शक्ति है, मन को पढ़ने की शक्ति, जिसका मैं कदाचित ही उपयोग करता हूँ। यदि स्वीकृति दो तो मैं तुम्हारे मनों को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कल मैं अन्य लोगों के साथ ही तुम दोनों को भी मंत्र दीक्षा देना चाहता हूँ। हमने सहर्ष सहमति दे दी। अपनी इस परीक्षा के फल से वे अवश्य संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि अगले दिन कुछ अन्य लोगों के साथ ही हमें भी मंत्र देकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बाद में ये पूछे जाने पर कि हमारे मन की परीक्षा के समय क्या देखा, उन्होंने हमें थोड़ा सा कुछ बताया था।
0: वे बार बार जो भी भविष्यवाणी करते थे वही फलीभूत होता था। उनके शिष्य अवाक हो जाते थे।
2: उन्होंने देखा था कि हमने से एक का जीवन भारत के साथ अविच्छेद्य भाव से जुड़ जाएगा। उन्होंने हमारे बारे में महत्वपूर्ण तथा सामान्य अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से लगभग सभी सत्य प्रमाणित हुए हैं। उन्होंने देखा था कि हम लोग उनके विश्वस्त होंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसका कुछ कुछ वर्णन किया। हर चित्र की व्याख्या नहीं की। एक व्यक्ति के बारे में उनके सम्मुख दृश्य पर दृश्य आते गए, जो दर्शाते थे कि उसे काफी भ्रमण करना होगा, संभवतः प्राच्य देशों में। उन्होंने इन सब का वर्णन किया, जिन घरों में हम रहेंगे, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क होगा और जो चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी।
1: स्वामी जी भविष्य दृष्टा भी थे। वे जो भी भविष्यवाणी कर गए थे सभी सच साबित हुई।
2: हमने उनसे इस शक्ति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसकी प्रक्रिया कम से कम बताते समय तो बड़ी ही आसान लगी। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथा सामान्य घटनाएं भी पहले ही बता दी गई और लगभग सभी सत्य हुए। इस परीक्षण में व्यक्तित्व की विशेषता, उसका स्वभाव, उसकी क्षमता और उसका चरित्र प्रकट हो जाता था। इस परीक्षा में खरा उतरने के बाद अपने बारे में कोई हीन भावना या आत्मविश्वास का अभाव नहीं रह सकता था। प्रत्येक क्षणिक शंका के स्थान पर एक प्रशांत आश्वासन आ जाता था, क्योंकि क्या इसमें हमारे व्यक्तित्व पर उन अलौकिक व्यक्ति की स्वीकृति की मोहर नहीं लग गई थी।
0: सहस्त्र दीपोद्यान का वर्णन क्रिस्टीन ने बहुत ही रोचक ढंग से किया है।
2: सहस्त्र द्वीपोद्यान पार्क हजार द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा है और 9 मील लंबा तथा 1 या 2 मील चौड़ा है। नदी के किनारे स्थित गांव के पास स्टीमर ठहरते हैं। उन दिनों उस द्वीप का बाकी भाग करीब करीब निर्जन ही था। हमें जिस मकान में जाने का निर्देश था वो गांव से 1 मील दूर था। ये एक चट्टान पर बना था। क्या ये सांकेतिक संयोग था? सामने से ये 2 मंजिल और पीछे से 3 मंजिल ऊंचा था। ये घने जंगलों से घिरा था। निर्जन में होने के बावजूद इसमें हमारी आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध थी। हम लोग एक दूसरे से मिले बिना भी चारों दिशाओं में घूम सकते थे। कभी कभी स्वामी जी केवल लैंडमार्क को साथ लेकर टहलने जाते थे, फिर कभी वे हम में से किसी 1 या 2 को साथ चलने के लिए कहते और यदा कदा पूरा दल उनके साथ होता।
1: स्वामी जी कहानियां सुनाकर उन लोगों का मनोरंजन करते थे। हास परिहास करने में तो वे पारंगत थे ही।
2: उनके पास रोचक कहानियों का भंडार था, जिसमें से कुछ वे बारंबार सुनाया करते थे। उनमें से एक थी एक मिशनरी के बारे में, जिसे धर्म प्रचार के लिए नरभक्षियों के द्वीप में भेजा गया था। वहां पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों से पूछा, मेरा पूर्ववर्ती आप लोगों को कैसा लगा? इस पर उसे उत्तर मिला, वो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वे नरभक्षी जो थे। फिर स्वामी जी उस महिला की कहानी भी सुनाते, जिसने पूछा था, स्वामी जी क्या आप बुद्धिस्ट हैं? बुद्धिस्ट यानी बौद्ध पर उच्चारण दोष के कारण अर्थ निकलता है बुद्धिस्ट यानी कली, कलियों के विक्रेता। इस पर उन्होंने व्यंग पूर्वक मगर गंभीर मुद्रा बनाकर कहा था, नहीं मैडम, मैं तो एक फ्लोरिस्ट हूं यानी फूल बेचने वाला। फिर उस युवती की कथा भी सुनाते जो उसी भवन में निवास करती थी जिसमें लैंड्सबर्ग के साथ स्वामी जी रहते थे। उस भवन के सभी लोग एक ही रसोई घर में भोजन पकाते थे। उसका पति एक प्रेतात्मावादी मीडियम था और लोगों के समक्ष प्रेतों का आह्वान किया करता था। उस युवती की प्रायः ही अपने पति के साथ झड़प हो जाती। ऐसी झड़पों के बाद वो सहानुभूति पाने के लिए स्वामी जी से पूछती, मेरे साथ उसका ऐसा दुर्व्यवहार क्या उचित है, जबकि सारे प्रेतों के रूप में तो मैं ही प्रकट होती हूँ। स्वामी जी लैंड्सबर्ग से अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सभा में लैंड्सबर्ग का शैतान के बारे में व्याख्यान हो रहा था। उसके सामने की ही कुर्सी पर लाल वस्त्र पहने एक महिला बैठी थी। लैंड्सबर्ग बीच बीच में बड़ा जोर देकर शैतान शब्द का उच्चारण करते और जब जब ऐसा होता तब तब निश्चित रूप से उनकी एक उंगली लाल वस्त्र पहनी महिला की ओर उठ जाती।
0: स्वामी जी अक्सर अपने पश्चिमी शिष्य शिष्याओं के साथ अपनी बचपन की बातें साझा किया करते थे। शिष्यों को भी भारतीय जीवन और परंपराओं की झांकी मिलती थी।
2: कभी कभी वो हमें भारतीय जीवन के बारे में बताते कि किस प्रकार जब वे एक छोटे बालक थे तब भी गेरुआ वस्त्र उन्हें इतना अधिक आकृष्ट करता कि उनकी गली में कोई साधु सन्यासी आता तो उनके हाथ में जो कुछ भी होता वो सब कुछ दे डालते। ऐसा कोई व्यक्ति मोहल्ले में आता तो उनके परिवार के लोग उनके कमरे में ताला लगा देते। तब वे खिड़की से ही चीजें फेंक देते। कभी कभी जब वे ध्यान में बैठते तो उनकी बाह्य चेतना पूर्णतः लुप्त हो जाती। परंतु उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था। जब वे शैतानी करने लगते तो उनकी माँ उन्हें पकड़कर नल के नीचे बैठा देती और कहती, मैंने शिवजी से एक भूत मांगा था और उन्होंने अपना एक भूत भेज दिया। भविष्य में जो शक्ति पूरे भारत को हिला देने वाली थी, उसे सहज ही वश में नहीं किया जा सकता था।
1: उनकी बातों को शिष्यगण बड़ी उत्सुकता से सुनते। इसके पहले उन्होंने किसी धर्म गुरु के मुंह से ऐसी रोचक कहानियां नहीं सुनी थी।
2: जब उनके गृह शिक्षक आकर उन्हें पढ़ाने लगते तब वे आंखें बंद किए मूर्ति के समान बैठे रहते। नाराज शिक्षक चिल्लाते, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे पढ़ाते समय तुम सो जाते हो। इस पर वे अपनी आंखें खोलकर शिक्षक को विस्मय में डालते हुए सारा पाठ ज्यों का त्यों दोहरा डालते। उनकी इस कहानी पर विश्वास करना कठिन नहीं था, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। किसी के द्वारा इस पर टिप्पणी किए जाने पर उन्होंने कहा था, हाँ मेरी माँ की भी ऐसी ही स्मृति है। एक बार रामायण सुनने के बाद वो उसे यथावत सुना देती है। एक बार जब स्वीडन के इतिहास के किसी बिंदु पर बोल रहे थे, उस समय वहां का स्वीडन निवासी भी सुन रहा था और उसने स्वामी जी के कथन में कुछ भूल निकाली। स्वामी जी अपने तथ्यों के बारे में इतने निश्चित थे कि वे मौन रहे। उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन वो स्वीडन वासी शर्मिंदा सा उनके पास आया और बोला, स्वामी जी मैंने जाकर इस विषय में खोजबीन की और पाया कि आपका कहना सही था। ऐसे प्रमाण हमें बारंबार मिले हैं। अच्छी स्मरण शक्ति को वे आध्यात्मिकता का एक लक्षण मानते थे।
0: स्वामी जी माँ को पूजते थे। बहुत ही सम्मान के साथ वे माँ की बातें किया करते थे। कहते थे, माँ को बहुत दुख दिया है मैंने, मैं एक बुरा बेटा हूं, माँ को कोई भी सांसारिक सुख नहीं दे पाया मैं।
2: वे अपनी छोटी सी परंतु स्वाभिमानी माँ के बारे में बहुत सी घटनाएं सुनाते थे कि किस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपने भावों तथा स्वामी जी के बारे में अपने गर्व को छिपाने का प्रयास करती हैं, किस प्रकार वे उनके चुने हुए मार्ग के प्रति अपनी असहमति और उनके द्वारा अर्जित प्रसिद्धि में गौरव बोध के बीच द्वंद्व में पड़ी रहती है। प्रारंभ में वे चाहती थी कि उनका पुत्र विवाह करके परंपरागत सांसारिक रूप से एक सफल जीवन बिताए, परंतु उन्हें ऐसे दिन देखने को मिले जब उनका सर्व त्यागी पुत्र सम्मानित हुआ और राजा महाराजा तक उनके समक्ष नतमस्तक हुए। परंतु इस दौरान उन्हें बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अनेक वर्षों बाद उनसे पूछा गया था कि शिशु के रूप में स्वामी जी कैसे थे, तो इस पर वे बोल उठी, मुझे उसे संभालने के लिए 2 दाइयां रखनी पड़ती थी।
1: और अब माँ भुवनेश्वरी देवी की यादें।
2: हम में से जिन लोगों को उनकी माँ से मिलने का सौभाग्य हुआ था, वे जानते हैं कि स्वामी जी को अपना राजसी व्यक्तित्व अपनी माँ से ही विरासत में मिला था। इन छोटी सी महिला का चाल चलन एक महारानी के समान था। बाद के वर्षों में अमेरिका समाचार पत्रों ने उनके बारे में उनके पुत्र का उल्लेख राजा सदृश सन्यासी विवेकानंद के रूप में किया था। उनमें एक कुमारी जैसी पवित्रता थी और लगता था मानो वे उसे दूसरों में भी संचरित कर देने में सक्षम है। यही संभवतः उनका महानतम उपहार था। परंतु स्वामी जी जैसे महापुरुष को क्या एक उपयुक्त परिवेश मिल सकता था? भारत और ऐसे माता पिता से उन्हें काफी संतोषजनक रूप में वो प्राप्त हुआ। अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम कितना अगाध था। अब वे भारत के अन्य प्रांतों में भ्रमण कर रहे होते तो कभी कभी उनके मन में आशंका होती कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और वे उनके बारे में सूचना मंगवाते, या फिर यदि बेलूर में रहते तो तत्काल का संदेशवाहक भेज देते। अपने अंतकाल तक उनकी एक प्रमुख चिंता थी कि किस प्रकार माँ की सुविधा और देखभाल की व्यवस्था की जाए।
0: और अब सुनिए बचपन की यादें, पिता की बातें।
2: इस प्रकार कई दिनों तक हम लोगों के लिए कोलकाता के शिमला अंचल में स्थित उनके पिता के मकान में बिताए गए। उनके बचपन के दिन सजीव हो उठते थे। अपनी बहनों के लिए उनके मन में विशेष प्रेम था और पिता के प्रति श्रद्धा का भाव था। इनका उल्लेख भी बारंबार आ जाता था। उन्होंने कहा था, अपनी मेधा तथा दया भाव के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ। वे बताते कि कैसे उनके पिता ये जानते हुए भी कि वो इन्हें किस काम में लाएगा, एक शराबी को पैसे देते और अपने बचाव में वे कहते, ये जगत इतना भयंकर स्थान है कि यदि वो किसी प्रकार इसे कुछ समय के लिए भूल जाता है तो उसे वैसा ही करने दो। उनके पिता धन खर्च करने में बड़े उदार थे। एक बार जब वे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक खुले हाथ से खर्च कर रहे थे तो उनके किशोर पुत्र ने पूछा, पिताजी आप मेरे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? पिता बोले, जाओ दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़कर जाऊंगा।
1: अपने गुरु के बारे में स्वामी जी का मत सुनिए। क्रिस्टिन कहती हैं,
2: अपने गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति अपूर्व थी। प्रेम और निष्ठा जैसे शब्दों को नए अर्थ मिले। उनके भीतर उन्होंने ईश्वरत्व का जीवंत रूप देखा और पाया कि उनके भावों के अनुसार उनका शरीर भी रूपांतरित हो जाता है। उनके अशिक्षित होने के बावजूद स्वामी जी ने कहा था, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनमें वे ही सर्वाधिक मेधावी थे। ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने असाधारण बौद्धिक उपलब्धिवान लोगों को भी विस्मय में डाल दिया था।
0: धर्म महासभा के बारे में सभी जानते हैं, भगनी क्रिस्टीन ने भी वही सुनाया।
2: एकाकी और बिना किसी पूर्व सूचना के वे अमेरिका महाद्वीप में गए। धर्म महासभा में अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने पहले कभी व्याख्यान नहीं दिया था, केवल अनौपचारिक रूप से अपने आसपास बैठे लोगों की छोटी टोलियों को उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ बोला हुआ था। फिर अन्य लोगों के भांति मैं अपना व्याख्यान लिखकर भी नहीं लाया था। मैं अपने गुरुदेव तथा वाक्य देवी सरस्वती का स्मरण करते हुए खड़ा हो गया। मैंने आरंभ किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, परंतु मैं इसके आगे नहीं बढ़ सका। तालियों की गड़गड़ाहट के कारण मुझे रुक जाना पड़ा था। लगता है कि श्रोताओं ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि इस अद्भुत स्वागत से उनके हृदय में कैसी भावना उमड़ी, कैसा विस्मय युक्त रोमांच उत्पन्न हुआ। उन्होंने पहले से भी अधिक प्रबलता के साथ अपने पीछे स्थित शक्ति का अनुभव किया। उस दिन से अपने ईश्वर आदिष्ट होने के विषय में उनके मन में कभी कोई शंका नहीं उठी। वे वेदांत के एक अग्रदूत प्रथम प्रचारक थे। उनकी आध्यात्मिकता सब में विस्मय उत्पन्न करती थी। लोग पूछने लगे, जिस देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं वहां मिशनरियों को भेजने की क्या जरूरत है।
1: अब सुनते हैं भगिनी क्रिस्टीन से स्वामी जी के कुछ उद्गार जो उन्होंने अमेरिका में विभिन्न भाषणों में कहे थे।
2: कुछ महान विचार याद रह जाते हैं, इसीलिए नहीं कि वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नवीन तथा अद्भुत होते हैं। और उस समय ऐसा ही हुआ। जब स्वामी जी ने याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी की कथा सुनाने के बाद अंत में कहा, वस्तुतः पति के लिए नहीं अपितु पति में निहित आत्मा के लिए ही उससे प्रेम किया जाता है।
3: ये विचार हमारे लिए बिल्कुल नया था कि सभी प्रेम एक ही हैं और हम पुत्र पिता माता पति पत्नी मित्र में आत्मा को देखते हैं और इसलिए उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम के माध्यम से वो आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति हो रही है। एक माँ अपनी संतान में उसी देवत्व को देखती है, वैसे ही पत्नी अपने पति में और बाकी संबंधों में भी लोग देवत्व को ही देखते हैं। हमने इसे श्रेणीबद्ध कर दिया है और कहते हैं माँ का प्रेम, बच्चे का प्रेम, मित्र का प्रेम, प्रेमी का प्रेम, मानो वे एक ही प्रेम की विविध अभिव्यक्तियां ना होकर प्रेम के भिन्न भिन्न प्रकार हों।
0: कुछ और याद रखने वाली बातों के बारे में हमें क्रिस्टीन ने बताया। स्वामी जी का विचार था,
2: आनंद में हमारा जन्म हुआ था, आनंद में हम निवास करते हैं और आनंद में हम लौट जाएंगे। हमारा जन्म पाप से नहीं, आनंद से हुआ है। आनंद हमें कहीं से प्राप्त या अर्जित नहीं करना है, बल्कि वो हमारा स्वभाव है। तत् त्वम असि, तुम वही हो। दुखों के बीच में, आपदाओं के बीच में भी यही सत्य है। उस अवस्था में भी मुझे कहना होगा, मैं आनंदमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं। मेरा ये स्वरूप किसी पर निर्भर नहीं करता और न ही मेरे स्वरूप पर कुछ निर्भर करता है। ये एक ही समय में एक भयंकर और सुंदर सत्य है।
1: स्वामी जी के कुछ और भी विचार खासकर दूसरे धर्मों के बारे में क्या थे, क्रिस्टीन ने बताया।
2: पूर्णता या दिव्यता मनुष्य का अब भी सच्चा स्वरूप है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सत्य की केवल अनुभूति कर लेनी है। स्वयं को अपूर्ण, सीमाबद्ध, असहाय समझना एक भ्रांति मात्र है। हम पूर्ण, सर्वशक्तिमान तथा दिव्य हैं। हम अब भी वही हैं। इसका अनुभव करो और तुम तत्काल मुक्त हो जाओगे।
4: हमारा विश्वास था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और एक अवतार हैं। स्वामी जी ने उसी की पूजा और आराधना की, परंतु इकलौते अवतार के रूप में नहीं। उनका मानना था कि अन्य युगों में, अन्य स्थानों पर, अन्य लोगों पर भी ईश्वर ने कृपा की है।
5: उन्होंने जरथुस्त्र के बचे हुए अनुयायी पारसी लोगों की कथा बताई। जब 1000 वर्ष पूर्व मुसलमान कबीलों ने ईरान पर आक्रमण किया था, तो उन लोगों ने वहां से भागकर भारत में शरण लेकर जान बचाई। अग्निपूजकों की ये संतानें अब भी भारत में अपने प्राचीन रीति रिवाजों के प्रति निष्ठावान है और अपनी भूमि में अबाध स्वाधीनता के साथ उनका पालन कर रही है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यद्यपि यह एक छोटा सा समुदाय है, तथापि इन लोगों ने अपने लिए एक सम्मानित स्थान बना लिया है और महान व्यक्ति पैदा किए।
6: उन्होंने हमें बताया, क्रूसबिद्ध होने के करीब 50 वर्ष बाद ही उनके शिष्य टॉमस द्वारा भारत में ईसाई धर्म लाया गया। भारत में कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ और प्रारंभिक ईसाई धर्मांतरितों के वंशज आज भी दक्षिणी भारत में निवास करते हैं। जब यूरोप बर्बरता की अवस्था में था, तब भी भारत में विशुद्धतम ईसाई धर्म प्रचलित था। इस समय उनकी संख्या मुश्किल से 10 लाख हो, जबकि पहले कभी उनकी संख्या इसकी 3 होनी थी।
0: विदेशी भक्तों को गीता का ज्ञान स्वामी जी से ही मिला। भगनी क्रिस्टीन कहती हैं,
2: वे जिसके साथ रहते थे वो बड़े क्रोधी स्वभाव का था। किसी ने पूछा, आप उनके साथ क्यों रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आहा, मैं उसे धन्यवाद देता हूं, वही तो मुझे आत्म संयम का अभ्यास करने का अवसर देता है। किसी भी कीमत पर अपनी सुख सुविधा चाहने वाले हम पाश्चात्य लोगों के लिए ये एक नई बात थी। इस प्रकार हमने प्रतिदिन और प्रति घंटे गीता के महान आदर्शों को दैनंदिन जीवन में क्रियान्वित होते देखा। मित्र के समान ही शत्रु में भी, प्रशंसक के समान ही निंदक में भी अपनी आत्मा को ही देखना और सम्मान या अपमान दोनों में अविचलित रहना, यही उनकी सतत साधना थी।
1: स्वामी जी इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी शांत ही रहे, नाम का मोह उन्हें नहीं था।
2: इतनी अल्प आयु में एक ही दिन या मिनटों में प्रसिद्धि पा लेना बड़ी ही दुर्लभ घटना है, पर धर्म महासभा में स्वामी जी के साथ ऐसा ही हुआ था। इस भावुक उन्मुक्त लोकप्रियता के बीच भी वे इतने शांत बने रहे मानो हिमालय की किसी गुफा में एकाकी निवास कर रहे हों। जिस तरह की उपलब्धि के लिए आगे आजीवन संघर्ष करते हैं, उसे उन्होंने नाम यश के गंदे चीथड़े कहकर दरकिनार कर दिया था।
0: स्वामी जी केवल प्राचीन विश्व इतिहास के ज्ञाता ही नहीं थे, वे वर्तमान में जो कुछ घट रहा है उससे काफी परिचित थे और उसी पर वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगा लेते थे।
2: कभी कभी वे एक भविष्य दृष्टा ऋषि के भाव में होते। एक दिन ऐसे ही भाव में उन्होंने यह कहकर हम सब को अचंभे में डाल दिया कि एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाला आगामी आंदोलन या तो रूस से आएगा या चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा। ये बात उन्होंने 32 साल पहले तब कही थी जब चीन मंचू शासकों के तानाशाही शासन के अधीन था और शताब्दियों तक उसकी उससे छूटने की कोई संभावना न थी। और जब जार शासित रूस अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को श्रमिक बनाकर साइबेरिया के खदानों में भेज रहा था, एक सामान्य विचारक के लिए तो विश्व में एक नए युग का सूत्रपात करने में उन दोनों देशों की कोई भूमिका अकल्पनीय थी। पर यह सच निकला।
1: उनकी सभी भविष्यवाणी सही साबित हुई। चीन का विश्व शक्ति बनना, विश्व युद्ध की विभीषिका, रूस का आंदोलन, ये सब उन्होंने अपने जीवन काल में ही कह दिया था। सामाजिक परिवर्तन तो हमारे सामने ही घटित हो रहा है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।